0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रसारण सभा। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे

0: उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सर्वप्रथम सुन लेते हैं ये मातृवंदना।

समूह स्वर में ये मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की, और अब सुनिए ये निर्गुण भजन।

पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में ये निर्गुण भजन अभी आपने सुना। रचना थी संत कबीरदास की, और अब सुनिए ये भक्ति रचना।

जगजीत सिंह के स्वर में ये श्री कृष्ण भजन अभी आप सुन रहे थे और इसी के साथ भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही समय पश्चात प्रातः 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर होगा मन्ना डे का, भूले बिसरे गीत। यह कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनिएगा सुबह 6:55 पर। सुबह सुबह यह कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 7 से। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कृषि संकेत। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 7:10 पर। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:20 पर।

संगीत सरिता, हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 7:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार प्रभात हम रिले करेंगे सुबह 8 बजे से। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा प्रातः 8:15 पर। चित्रपट संगीत हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 8:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनिएगा सुबह 10 बजे से। चिट्ठी से लोकगीत आप सुन सकेंगे प्रातः 10:05 पर। सुबह 10:30 पर सुनिएगा ग्राम लक्ष्मी। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा दोपहर के 2:10। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार हम अनुप्रसारित करेंगे दोपहर 2:15 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे 5 बजे से। शाम 5:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। संगीत सरिता यह कार्यक्रम होगा शाम 5:35 पर।

श्रोताओं शाम 6:30 पर सुनिएगा सदाबहार गीत लोक रंग। यह कार्यक्रम होगा शाम 6:45 पर। हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7 बजे से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे शाम 7:10 पर। खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी, समय याद रखिएगा शाम 7:20।

चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8 बजे से। रात्रि 8:20 पर सुनिएगा संगीत सरिता। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या हम अनुप्रसारित करेंगे रात्रि के 8:45 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे से। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर है मन्ना डे का।

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिक्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायन स्वर था मन्ना डे का। अभी आपने सुनी इसकी 38वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: नौजवान इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर था लता मंगेशकर का। गीत के बोल लिखे थे साहिर ने। संगीत था सचिन देव बर्मन का।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

0: बरसात इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत था शैलेंद्र का, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

0: 两百个家家百百两个家家百家家两个家家家家家
1: 家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家Lapa ke chapak, lapa ke chapak, lapa ke chapak, lapa ke chapak, lapa ke chapak tu tuwa, lapa ke chapak tuwa, lapa ke chapak tuwa, lapa ke chapak tuwa, lapa ke chapak, lapa ke
0: chapak, lapa ke chapak, lapa ke chapak, lapa ke chapak, lapa ke chapak,
1: lapa ke chapak, lapa
2: बूट पॉलिश सुन से यह गीत अभी आप सुन रहे थे स्वर्था मन्नाडे का। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सुबह सुबह।

सुबह सुबह सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आपके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमें एक सफल व्यक्तित्व बनाने के पीछे होती है हमारी विचारों की शक्तिशाली योजना। सशक्त विचारों की शक्ति का अर्थ है सकारात्मक केंद्रित और दृढ़ सोच की वो अद्भुत क्षमता जो हमारे जीवन को आकार देती है, हमें चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। यह एक गतिशील ऊर्जा है जो हमें प्रेरित करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और हमारे कार्यों को दिशा देकर लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है, जिससे निराशा दूर होती है और जीवन में उत्साह आता है। सशक्त विचार हमें आशावादी बनाते हैं, जिससे हम मुश्किलों का सामना साहस से कर पाते हैं और जीवन में प्रगति करते हैं।

जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन वैसा ही बनता जाता है। सशक्त विचार हमें सशक्त बनाते हैं और जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं।

में अपनी भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। विचार एक गतिशील शक्ति है। जितने प्रबल विचार होते हैं उतनी ही जल्दी वे फलित भी होते हैं और जीवन में तेजी लाते हैं। नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। अपने विचारों को साक्षी भाव से देखें। जिससे आप उन्हें नियंत्रित कर सकें और अनावश्यक विचारों को कम कर सकें। अपने विचारों को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करें ताकि वे अधिक प्रभावी बने, अपनी इच्छाओं और विचारों को उच्च और सकारात्मक दिशा में ले जाएं। शक्तिशाली विचार ही हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने में सहायक होते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता को पूरी तरह पहचान पाते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजी निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं, तभी हम अपने कार्यों को पूरा कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, जबकि विचार दूर तक यात्रा करते हैं। श्रोताओं, सुबह सुबह में आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि संकेत। विषय है खरीफ में बीजों का अंकुरण परीक्षण। विशेषज्ञ स्वर है डॉक्टर एके त्रिपाठी का।
1: किसान भाइयों नमस्कार। वर्तमान में हमारा खरीफ का सीजन प्रारंभ होने वाला है और सीजन प्रारंभ होने से पहले हम बीज का अंकुरण की जांच करके ही उस बीज का उपयोग करें। देखिए सोयाबीन में जो सोयाबीन का बीज है वो बहुत नाजुक होता है, उसका जो एम्ब्रियो या भ्रूण होता है वो बहुत नाजुक होता है। ऐसा अनुसंधान में पाया गया कि अगर सोयाबीन की बोरी को आप 10 फीट ऊपर दूरी से पटक देंगे नीचे तो उसका 20% अंकुरण कम हो जाता है। अगर आप एक के ऊपर एक 5 बोरियां रख देंगे तो नीचे की जो बोरी है उसका अंकुरण कम हो जाता है। यानी 4 बोरी से ज़्यादा हमको सोयाबीन का भंडारण एक के ऊपर एक नहीं करना चाहिए। तो अंकुरण की जांच आपको हर सोयाबीन का, चाहे आप किसी भी संस्था से लाए हों, किसी भी स्रोत से लाए हों, चाहे प्रमाणित हो चाहे प्रमाणित ना हो, आपको हर बीज जो आप खरीद के लाए हैं उसको एक बार घर में जमा के ज़रूर देखना है। उसके लिए आप एक साफ़ सुथरी तौलिया या साफ़ सुथरी टाट पट्टी की बोरी मोटी वाली, उसको बिल्कुल गंदी ना हो, जिससे पैर वैर पहुँचते हैं बिल्कुल ना हो, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हो, उसको पानी में पूरा गीला करें और अंधेरे स्थान पर उसको फैला के जो सोयाबीन आप लाए हैं या जो रखा है आपके पास उसके 2 सैंपल निकालें आप 100-100 दाने के, और 2 लाइन में आप उनको रख दें और उसी बोरे से या तो ढक दें या दूसरे फ्रेश बोरे से, साफ बोरे से आप गीला करके उसको ढक दें। और अगर आपको और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप 20-25 मिनट के लिए पानी में, साफ़ सुथरे पानी में वो 100 दाने डाल दें और दूसरे बर्तन में 100 दाने दूसरे डाल दें। 20-25 मिनट वो गला रहेगा तो उसका अंकुरण और जल्दी होगा। फिर उसको आप जो बोरा हमने बताया जूट के बोरे में या मोटी वाली तौलिया में या पेपर, न्यूज़पेपर आप ले लें उसको भी गीला करके, या बाज़ार में अंकुरण पेपर भी मिलते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, उनमें आप उनको रख दें और पानी से उसको हल्का मतलब स्प्रे करके पानी का गीला करते रहें। 2 से 3 दिन में आपका अंकुरण दिखने

0: लगता है अगर 100 में से 70 दाने जमते हैं तब आपको एक एकड़ में 30 से 32 किलोग्राम बीज बोना है, इससे ज़्यादा बीज बोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 70% से कम आता है तो जितना कम आता है उसी रेशो में आपको बीज की मात्रा बढ़ानी है, और ऐसा बीज जिसका अंकुरण 50% से कम है उसको हमको बिल्कुल उपयोग नहीं करना, चाहे आपका खुद का हो चाहे किसी और स्रोत से लाए हों आप। यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि हम खरीफ मौसम की फसलों में यदि बीजोपचार करके बुआई का काम करते हैं तो हमारा अंकुरण का जो प्रतिशत है वो 5 से 10% तक अंकुरण हमारा बढ़ जाता है। इसलिए आप उपयुक्त फफूंदनाशी, अगर आप जैविक चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोडर्मा प्लस सूडोमोनास, इससे आप उपचारित करें। अगर आपको रासायनिक करनी है तो आप कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, कार्बोक्सिन प्लस थायरम या और भी जो बाज़ार में मिलने वाले फफूंदनाशी हैं आप अपनी इच्छा से वो क्रय करके, पहले आपको फफूंदनाशी से उपचार करना है। दूसरा जो बीज का उपचार है वो होगा कीटनाशी से, जिससे आपका पीला मोजेक या तना मक्खी या सफ़ेद मक्खी का प्रकोप नहीं होगा। और तीसरा उपचार आपको कल्चर से करना है, उसमें राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर, आपका केएसबी कल्चर, ये कल्चर हो सकते हैं। और यदि आप उसको और अच्छे अंकुरण की मतलब आपके मन में इच्छा है तो आप नैनो डीएपी की 5 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज में भी आप उसका चौथा उपचार जो है वो नैनो डीएपी से कर सकते हैं, जिससे आपके फास्फोरस की पूर्ति होगी और पौधे का जो अंकुरण है, मूलांकुर और प्रांकुर है, वो अच्छा विग्रस आएगा। नमस्कार किसान भाइयों।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, विषय था खरीफ में बीजों का अंकुरण परीक्षण, विशेषज्ञ स्वर था डॉक्टर एके त्रिपाठी का।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और 5वें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य भेंट, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर, इंदौर में करेंगे बीएलओ कॉन्फ्रेंस को संबोधित। और प्रदेश में देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, शहडोल और शाजापुर सहित कई जिलों में बदले गए एसपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे। इसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीजी सेमी OS-80 सेमी कंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीईओ फोरम में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में वे न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा करेंगे, जो 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे तीनों देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर किसानों को उपयुक्त फसलों की सलाह देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को जल भंडारों की निगरानी और विद्युत मंत्रालय को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी के सहयोग से प्रदेश एक ऊर्जा दक्ष, हरित और समृद्ध राज्य बनेगा। KfW बैंक ने बताया कि एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत स्मार्ट मीटर स्थापना के लिए करीब 1,120 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जा रहा है। बैंक ने फेज 2 के तहत विद्युत वितरण अधोसंरचना के लिए करीब 2,200 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग में भी रुचि दिखाई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। पदभार संभालने के बाद ये उनका पहला प्रदेश का दौरा है। पहले दिन वे इंदौर में लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और 5 जिलों के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं, जिनमें शहडोल और शाजापुर के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल और प्रियंका शुक्ला को शाजापुर का नया एसपी बनाया गया है। सागर, नर्मदापुरम और भोपाल ग्रामीण में भी नए आईजी की पदस्थापना की गई है, जिसमें मिथिलेश शुक्ला को सागर रेंज और चंद्रशेखर सोलंकी को नर्मदापुरम जोन का आईजी बनाया गया है। वहीं रुचि वर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल नई दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत को 2030-31 तक $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देश का पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। यहाँ 26,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश समझौते हो चुके हैं। मंत्री ने इंदौर में टेक्सटाइल टेस्टिंग फैसिलिटी और जबलपुर रीवा में नए आईसीडी स्थापित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए 13 स्थानों पर करीब 12,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉ. यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है, इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालय पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में चंदी की कथित अनियमितताओं को लेकर 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी। इस दौरान वे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

बालाघाट जिले के केरनापुर थाना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे 16 ग्रामीणों को पुलिस, एसडीआरएफ और हॉकफोर्स के संयुक्त अभियान से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम भानपुर में खेत में गए ग्रामीण अचानक बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर गए थे। समय पर की गई कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि इंदौर, देवास और सीहोर में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम और अंतिम 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। आपको समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे जिले में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में सहभागिता करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत इंदौर जिले के मानपुर में पुलिस ने कल शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं मंदसौर पुलिस SP विनोद कुमार मीणा ने भी कल साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सार्थक ऐप में डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा नियम विरुद्ध अटेंडेंस लगाने की गड़बड़ी पाए जाने पर CMHO भोपाल ने कार्रवाई की है। आगर मालवा जिले में आयोजित रोजगार मेले में 62 शिक्षित बेरोजगार युवाओं का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत सतना जिले के 262 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन कल हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रवाना की गयी। शिवपुरी जिले के कोलारस पीठ सनवारा में वन विभाग द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अवैध जुताई में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर और 2 कल्टीवेटर जब्त कर संबंधित पर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। देवास के सिवनी अभयारण्य में आपसी संघर्ष में घायल हुए नरबाघ युवराज का भोपाल के वन विहार रेस्क्यू सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है। जांच में बाघ के आगे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर और पिछले बाएं पैर में गहरा घाव पाया गया है, जिस पर 6 टाके लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

1942 आई लव स्टोरी, इस फिल्म से यह गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था आर डी बर्मन का। पसंदगी थी आप सभी की। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल और आपके सभी साथी। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा, माही। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, छीपा, कपिल, ईशान, पूजा और आपके सभी साथी। हरियाणा से जसबीर सिंह अरोरा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर, घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय,

0: आपके सभी साथी।
1: इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
0: रब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

0: साया, इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाजें थीं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था M.M. किरवाणी ने। फरमाइश भेजी थी आप सभी ने सनावद मध्य प्रदेश से, अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा, राजकुमार, सुदामा और आपके सभी साथी। जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी और हर्षदा। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी और आपके सभी साथी। खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय और किट्टू। भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री। बिजनौर से मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना। बुलंदशहर से सैयद अब्बासी, निगहत, शाहनवाज, फरदीन, अरजान और अबान।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

वीर जारा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, संगीत था मदन मोहन का। पसंदगी थी आप सभी की। गांधी चौक रो पर पंजाब से हरदेव, मिका, बलविंदर, जयतेग और आपके सभी साथी। भवपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, देवांगन, चंपा, राजू, नेहा, जगदीश और आपके सभी साथी। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश और आपके परिवार के सभी सदस्य। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा और आपके सभी साथी। सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से सुनने वाले प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन, ओवी और आपके परिवार के सभी सदस्य। मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जीव्यम और आपके परिवार के सभी सदस्य। बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल और आपके सभी साथी। इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: सपना अवस्थी के स्वर में यह गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: लकी अली की आवाज़ में यह गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनेनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर

0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के

0: शेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, ट्रेंट मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोक सत्य लिखता है, सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोक सत्य ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है, बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं इंद्रपाल विश्वकर्मा से ये गणेश वंदना।

0: इट्स रविवार। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
1: और अब सुनिए रामकुमार प्रजापति और साथियों से ये विवाह गीत।

0: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
1: और अब सुनिए केशव सुल्लेरे से ये वर्षा गीत।

इस वर्षा गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: अफसाना प्यार का। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं अमित कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था अनजान ने, संगीत था बप्पी लहरी का।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: मैं सागर हूँ।
3: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।

0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

हम आपके हैं कौन। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाजें थीं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत लिखा था रविंद्र रावल ने, संगीत था राम लक्ष्मण का। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

0: फना, इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाजें थीं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने, संगीत था जतिन ललित का।
1: मैं सागर हूं। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

मोहब्बतें। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था जतिन ललित का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको मोहरा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें उदित नारायण अलका याग्निक की हैं।

मोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निकी थी, आनंद बख्शी के बोल थे, विजू शाह का संगीत था। दोस्तों, बरसात की पहली फुहार जब धरती को छूती है तो मिट्टी की सौंध ही सी खुशबू मन को नई नई ऊर्जा से भर देती है। यही मौसम हमें प्रकृति के सबसे अनमोल उपहार वृक्षों का, पेड़ पौधों का, वनों का याद दिलाता है। इसीलिए हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ हमें केवल छाया ही नहीं देते बल्कि हमारी सांसों के, हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। वे हमें प्राणवायु देते हैं, वर्षा के चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं और तमाम जीव जंतुओं का आश्रय भी बनते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने है, तब एक पौधा लगाना

ना कितना ज़रूरी है, ये पर्यावरण की सेवा होगी। अगर प्रत्येक घर में हर एक इंसान या हर घर में एक कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है अपने पूरे जीवन में, तो सोचिए कितने पेड़ हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं। ये आवाज़ें सुनिधि चौहान, कुणाल गांजावाला की है।

0: सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज़ों में आप सुन रहे थे रूबरू फिल्म का गीत। सोनिक सेन ने इस गीत को लिखा था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

फिर से बहुत स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सोनू निगम की आवाज़ में और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अमाल मलिक और प्रीतम ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों आज है 4 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और ये बताना कि मिलजुल कर काम करने से समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन अधिक सशक्त बनता है। एक अकेला इंसान जिस काम को थोड़ी अधिक समय में कर सकता है, वही काम साथ मिलकर कम समय में किया जा सकता है और साथ मिलकर सफलता तय करना ये बताना है। जब व्यक्ति अपने हित के साथ समाज के हित को भी महत्व देता है तब विकास का रास्ता मजबूत होता है। आइए संकल्प लें, सहयोग और साझेदारी की इस भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वर्ष 2026 की ये थीम है, शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ये थीम समाज में न्याय और एकजुटता को बढ़ावा देने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। सुनते हैं हम ये गाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गदर 2 फिल्म का गीत आप उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से सजाया था मिथुन ने। आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं तक, आपसे आज्ञा चाहते हैं आज का कार्यक्रम समाप्त करने की। दीजिए इजाज़त सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक कम चर्चित संगीतकार की बातें।

रामलाल चौधरी का जन्म 15 अगस्त 1922 को बनारस में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। शहनाई और बांसुरी शौकिया तौर पर वो बजाया करते थे। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल की बांसुरी और शहनाई सुनी तो उन्हें बनारस से बंबई ले आए। सन 1944 में रामलाल समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई में आए। 14 साल तक वो संगीतकार राम गांगुली के सहायक रहे। राम गांगुली को राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के लिए कई गानों में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई।

रामलाल ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 80 रुपए की तनख्वाह पर शहनाई वादक की नौकरी कर ली थी। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक चल रहा था, शकुंतला। इस नाटक की संगीत टोली में काम करते हुए रामलाल का परिचय राज कपूर से हुआ था। रामलाल बांसुरी और शहनाई बजाया करते थे। इसी दौरान वी शांताराम ने रामलाल को राजकमल स्टूडियोज में काम करने की पेशकश की। तनख्वाह ज्यादा थी तो रामलाल राजकमल स्टूडियोज में आ गए और बन गए शहनाई और बांसुरी वादक। वी शांताराम की कई फिल्मों में उन्होंने शहनाई और बांसुरी बजाई है, जैसे फिल्म सुबह का तारा।

इसी दौरान राजकमल स्टूडियोज यानी वी शांताराम ने रामलाल को बाहर की फिल्में करने की इजाजत भी दे दी। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में रामलाल को पहला मौका मिला पी एल संतोषी की फिल्म तांगावाला में। पी एल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी एक गीतकार और निर्माता, आज के जमाने के निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। फिल्म तांगावाला में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और वैजयंती माला। रामलाल का करियर शुरू हो रहा था लेकिन अफसोस ये फिल्म बंद हो गई। अब रामलाल बतौर बांसुरी और शहनाई वादक फिल्म उद्योग में अपना काम करते रहे। बतौर संगीतकार उनकी ख्याति अभी बननी बाकी थी लेकिन बतौर बांसुरी और शहनाई वादक उनकी बहुत ख्याति थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शहनाई के सुर छेड़े, जैसे फिल्म मुगले आजम।

1952 में रामलाल को एक बार फिर से स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला। फिल्म थी हुस्न बानू। इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर चांदपुरी ने। इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

सन 1957 में आई फिल्म नागलोक। भरत व्यास का लिखा ये बेमिसाल गाना इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। संगीत रामलाल का था।

सन 1960 में आई माया मच्छेंद्र। इस फिल्म के गाने पंडित मधुर ने लिखे थे। ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक मधुर गीत।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म माया मच्छेंद्र में संगीतकार रामलाल के सहायक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके बाद रामलाल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में संगीत देने के लिए रामलाल को चुना और इस फिल्म के सारे गाने बेमिसाल बने। जा, जा, जा।

0: संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी।
1: शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत देसाई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगे। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में और शंकर जी को 120 मिलता था और जय किशन जी को 80 रुपया मिलता था। कहूँ वो लोग बाद में आए थे।

0: नवाला पिय संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे टांगा वाला राज कपूर भजंती माला। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उस गाने से हुसन बानो बनी, वो गाना खरीद कर हुसन बानो बनाए प्रोड्यूसर।
1: गाना कौन सा था?
0: प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता भाई ने गाया था।
2: वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुनिए।

जीत गया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया, उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना।

0: गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने सी एच आत्मा से दो गाने गवाए थे। एक गाना था ये
1: मंडवे तले के दो फूल खिल रहे हैं,
0: और सी एच आत्मा का इस फिल्म में गाया दूसरा गाना था ये
1: एक पल जो मिला है तुझको जीने के लिए।
0: दिलचस्प बात यह है कि रामलाल जी ने कन्नड़ फिल्मों में रामलाल सेहरा के नाम से संगीत दिया था। उनकी कुछ कन्नड़ फिल्में हैं बलुआ प्रपन्नय मजोड़ी, दाहा और डोमरी कृष्णा। वैसे आपको बता दें कि रामलाल जी को रामलाल हीरा पन्ना कहा जाता था, और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। रामलाल जी एक कान में हीरा पहनते और एक कान में पन्ना, इसलिए वो बन गए थे रामलाल हीरा पन्ना। रामलाल जी की शहनाई कई गानों में सुनाई पड़ती है, जैसे फिल्म परिणीता का ये गाना।

बतौर संगीतकार रामलाल जी का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। वो बतौर वादक फिल्म उद्योग में काम करते रहे। जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। रामलाल जी के जीवन का उत्तरार्ध बहुत मुश्किल में बीता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। एक दिन उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में फोन किया और कहा, मैं संगीतकार रामलाल बोल रहा हूं। इस तरह से उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया और उनका ये अनुभव

0: होल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ।
1: नहीं मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिल के भी कुछ खिसे में पैसा रहता था। हमारे जब जगह दूसरा आदमी होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर।
0: 4 जुलाई 2004 बारिश के दिन संगीत की दुनिया का ये पंछी चुपचाप उड़ गया। अखबारों में छोटी सी खबर भी ना छपी। रामलाल जी गुमनामी के अंधेरों में चुपचाप दुनिया छोड़कर चले गए। आज भी गूंजते हैं रामलाल जी के गाने और संगीत के कदरदान उन्हें याद किया करते हैं। फिल्मी गानों को सुने तो हम उन गानों को रचने वाले कलाकारों को जरूर याद करें, गीतकारों को, संगीतकारों को और गायकों को। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कलाकारों के लिए। रामलाल जी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार रामलाल पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह ने की।
2: आज के फनकार।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। भिंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा महाअभियान की शुरुआत हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों को योजना की जानकारी देते हुए 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि कम बारिश की आशंका को देखते हुए बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। जिले में किसानों को प्रीमियम बीमा कवरेज और दावा प्रक्रिया की भी जानकारी दी जा रही है। जिले में वीबी जी राम जी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस योजना के तहत रोजगार गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। जल संरक्षण की दिशा में भिंड के उमरी गाँव का उमरेश्वर तालाब अब नई पहचान बन रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद, जलकुंभी और झाड़ियां हटाई गई हैं। इससे बारिश का पानी बेहतर तरीके से रुकेगा, गांव के लोगों को साफ पानी मिल सकेगा। ग्रामीणों ने श्रमदान कर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। भिंड जिले के शासकीय छात्रावासों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर और अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए योग्य शिक्षकों से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। कोचिंग का संचालन सुबह और शाम दोनों समय होगा। भिंड के आईटीआई महाविद्यालय में 30 एमपी बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जिले के 350 कैडेट्स ने भाग लिया। शिविर में कैडेट्स को हथियार संचालन, निशानेबाजी, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह का समापन मेडल वितरण के साथ हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीर सिंह चौहान ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते मेहगांव और भिंड की ग्राम पंचायतों के 11 पदाधिकारियों पर कुल 48,81,000 रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। भिंड कलेक्टर ने मछली प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु काल घोषित किया है। इस दौरान नदियों और जलाशयों में मत्स्या खेत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना या 1 वर्ष का कारावास या दोनों का प्रावधान है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को भिंड में होगा। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। हर स्कूल से 3 विद्यार्थियों की टीम बनाई जाएगी और ऑनलाइन पंजीयन कराया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन तथा विरासत से जोड़ना है। भिंड जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत जन्म से 5 साल तक के करीब 2,70,000 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में 2,248 बूथ और हजारों स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शासकीय एमजेएस महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में कुल 153 आकांक्षी युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 6 कंपनियों द्वारा 122 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। मेगांव में आयोजित कुकिंग प्रतियोगिता में महिलाओं ने पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं के हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया और सभी को नशा मुक्ति की शपथ।

0: उड़ाई।
1: प्रदेश सरकार की एमएसएमई प्रोत्साहन योजना छोटे उद्यमियों की सफलता की कहानियां गढ़ रही है। घिरोंगी इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संचालक प्रमोद गुर्जर ने बताया है कि सब्सिडी की मदद से प्लांट विस्तार से उत्पादन क्षमता दोगुनी हुई है, जिससे अब लगभग 150 लोगों को स्थायी रोजगार मिल रहा है। वहीं मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में सोनू धाकड़ और पूजा धाकड़ ने सोना अधिका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर काजू प्रोसेसिंग में सफलता हासिल की, जिनके तैयार उत्पाद यूएई तक निर्यात होते हैं। इस इकाई में भी प्रत्यक्ष रूप से 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और एमएसएमई योजना के तहत मिले अनुदान ने उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी, या आकाशवाणी भोपाल।
1: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिट्ठी से लोकगीत।

कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत सुनने वाले सभी भैया बहनों को शशि की राम राम पहुंच जावे। और अब शुरू करें चिट्ठिया पतिया पड़वे को सिलसिला। तो जय चिट्ठिया हमारे पास लिख भेजी है, ग्राम हनोता से लिखे वाले हैं दिनेश पटेल, हजारी पटेल, महेश पटेल, जयराम पटेल, हरनाम, कमलेश, तुलाराम, संजू, नैन्सी, मयंक, सुहानी, स्वाति, मोहित, मुस्कान, कंचन, दीपक, गोमती, ममता, राजकुमार, प्रीतम, श्रीराम, सालकराम और इनके गांव के सभी ग्रामवासी। और जा चिट्ठिया हमारे पास लिख भेजी है, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से लिखने वाले भैया बहने हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके सभी संगी साथी। तो अपन सब जने सुनो देवी सिंह राजपूत की गाय भैया रैया।

0: भैया बहन सुन रहे थे देवी सिंह राजपूत को गाओ भाव लोकगीत, और अब सुने जो संदेश।
1: इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
0: और भैया बहनों अगलो लोग की सुन भी खिलाने हमारे पास चिट्ठिया लिख भेजी है। जय चिट्ठी आई है सदर बाजार सागर से सन्नू सेन, सोनू सेन, निशा चौक से, मिनी चौक से, सौम्या और मनोज भैया, बालाजी मंदिर के पास से लिखवे वाले हैं सुमित राय, कुलदीप राय, राहुल भट्ट, रानी भट्ट, निधि राय, राजकमल भाभी, मीना भाभी और नेहा। तो अपन सब जने सुनो मीरा सेन और उनकी सखियन को गाओ जो लोकगीत।

भैया बहन सुन रहे थे मीरा सेन और उनकी सखियन को गाँव भाव लोकगीत और अगलो लोकगीत सुने इन सबकी पसंद पे जाचिटिया हमारे पास लिख भेजी है। नेपाल पैलेस से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रोबिन, विवेक, शिवा, शिवांशु, प्रेम नारायण, सुजीत सिरोठिया, रमाकांत दुबे, प्रमोद सैनी, अवधेश सक्सेना, यश सक्सेना और रामदास। जाचिटिया हमारे पास आई है कंवर कॉलोनी बड़वाय से। लिखने वाले हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और इनके सभी संगी साथी। तो अपन सब जने सुनो प्रदीप अग्रवाल को गाओ जो लोकगीत।

भैया बहने सुन रहे थे प्रदीप अग्रवाल को गाँव भाव लोकगीत और अगलो लोकगीत सुने। इन सबकी पसंद पे जा चिट्ठिया हमारे पास आई है। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र और इनके सभी संगी साथी। जय चिट्ठिया लिखी भेजी है तिली सागर से सुनीता, मिनी और रमा ने। तो अपन सब जन ने सुनो लल्लू राम कुशवाहा को गाओ जो लोकगीत।

लवा की तेरा होड़ा होड़ी बजा लाए दोई रब्बी ही जोड़ी गल गल बन गई दलदल घोड़ी गेंगा बैंड बजा रो जी संग गेंगा बैंड बजा रो जी संग नच रही श्याम चरैया जंगल में अरे जंग

चले चाओ नी जानो नहीं आई समैया। गानो गड़ दो बया सुन

लगा गई टुइया हाँ सियानी, कलश धरे बोले बोले देहो रानी, गारी गावे मेहना रानी।

अरे जंगल में है मंगल चावरी जानो नहीं आई समैया, अरे जंगल।

भैया बहनों सुन रहे थे लल्लू राम कुशवाहा को गाओ भाओ लोकगीत। और भैया बहनों ए लोकगीत के संग चलो कार्यक्रम समाप्ति की तरफ। लेकिन हम पहले आपको व्हाट्सएप नंबर बता देवे आकाशवाणी को मोबाइल को, तो आप लिख लें जिसे आप मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से हमें आप अपने संदेश लिख के भेज सकें। जो संदेश आप लिख के भेजें तो भैया बहनों सो हम कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत में शामिल कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर लिख लें आप 9770-43-22-97। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं जिसे आप अच्छे से लिख लें 9770-43-22-97। तो जो है आकाशवाणी के मोबाइल को व्हाट्सएप नंबर ई पे आप अपने संदेश लिख के भेज सकते हो कि कौन सो लोकगीत सुनने हैं और कहां से आप लिख रहे हो। दूसरी बात भैया रजा है कि चिट्ठियां पतियां आप और लिखत रहो। चिट्ठियां पतियां लिखवे को हम आपको पता बता दे रहे हैं कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर मध्य प्रदेश। तो जो है चिट्ठी लिखवे को पता। और अब देव आज्ञा कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत से शशि को राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिट्ठी से लोकगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए ग्राम लक्ष्मी।

असड़ा लगतई बदरा घेर आए, असड़ा लगतई बदरा घेर आए, पुरवा बयार संग संदेशो लाए। धरती की चूनर भई हरियाली, धरती की चूनर भई हरियाली, सवई बहनों की अखियों में आई खुशहाली। बूंद पड़े जब खपरन पे, बूंद पड़े जब खपरन पे, छन छन बाजे पायल जैसे। और बहनों, मोड़ा मोड़ी दौड़े लेके कागज की नैया, दादा दादी देखे और मुस्कावे मैया। हाँ बहनों, कैसी लगी ये चंद पंक्तियाँ आप औरों को? कविता में बात आई है बहनों कागज की नैया की। सुबिन हमें ऐसो लगत है कि आप औरों को अपनो बचपन याद आ गई हुई है और चेहरा पे एक हल्की सी खिली खिली सी मुस्कान आ गई हुई है। तो एक खिली खिली मुस्कान के संगे हम आ गए हैं आप औरों को चहेतो कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी लेके। तो स्वीकार करो आपकी सखी शशि की राम राम। और बहनों, वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है जो कि हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में मनाओ जावे वालों एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। मेरे जो वन महोत्सव सप्ताह मनावे को उद्देश्य जन जन माने हर व्यक्ति हर एक इंसान के मन में पेड़ पौधों के प्रति प्यार जगावो है, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देवो और पर्यावरण को हरोभरो रखवो है। वन महोत्सव की शुरुआत सन 1950 में केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री K.M. मुंशी द्वारा देश में वन आवरण को बढ़ावे और जन जागरूकता पैदा करवे के लाने करी गई थी। और मैंने हम आपको जो भी बता देवे कि जो सप्ताह जुलाई के पहले सप्ताह में ही काय मनाओ जाते है, तो इसे मनाओ जाते है काय कि इस समय अपने इत बरसात को मौसम की शुरुआत होते है। सो जो पौधों को रोपबे और उनको पनपबे के लाने सबसे बढ़िया समय होते है। वन महोत्सव मनावे को यही उद्देश्य है कि देश में वनों और पेड़

पौधों की संख्या खूब बढ़े। सो हरियाली बढ़े और पेड़ पौधों के होवे से प्रदूषण भी कम हुई है, वातावरण खुशनुमा रहे है, वर्षा भी अच्छी हुई है और मैंने अपने आसपास की जमीन पे पेड़ पौधा लगावे, अपने खेत कल्याण में भी किनारे किनारे मेड़ों पे आप पेड़ पौधा लगावे। बल्कि बहनों जौन बहनों के खेत हैं उते अपने बाल बच्चों के नाम से भी आप पेड़ लगावें और उन पेड़ों पे अपने बाल बच्चों के नाम की एक छोटी सी तख्ती लगा देवे और वह तख्ती अपने बाल बच्चों को बतावे कि देखो जो पेड़ हमने तुम्हारे नाम से लगाओ है, चाहे बहनों मोड़ा होवे चाहे मोड़ी, अपने दोनों बच्चन के नाम से छोटी छोटी तख्ती लगा देवे। मैंने जब भी अपने नाम की तख्ती देखें तो उन्हें उन पेड़ों से खूब ही प्यार हो जाए है, खूब ही स्नेह हो जाए है कि हमारे नाम को जो पेड़ लगो है और वे पल पल देखते ही रहे हैं कि जो कब बड़ो हो रहा है। तो ऐसी आप उनके लाने खुशी दे सकती हो। ऐसे में कहा हुआ मैनो कि बाल बच्चा उन पेड़ों की देखभाल भी करें, एक अलावा मैंने एक पेड़ अपनी माँ के नाम भी लगावे और उनकी देखरेख करें। ऐसे करवे से पेड़ पौधों से अपनो स्नेह बढ़ा थे और जब अपन उन पेड़ पौधों को बड़ो होत देखा थे सो बहुत ही खुशी मिला थे। अपने आप अपन कह उठा थे कि जो पेड़ तो हमने लगाओ तो इतने साल को जो पेड़ हो गया है और देखो कितनो बड़ो हो गया है, हमने ये पेड़ की देखरेख करी। तो बस बहनों याद रखो आषाढ़ को महीना चल रहा है और खेतों में धान की रोपाई और मेड़ों पे अपने आंगन में खाली जगह पे एक पेड़ की रोपाई। उमें जब अपन पेड़ की रोपाई इस मौसम में कर रहे थे तो ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं रहती कि धरती में कैसे नमी रहते और आसमान में बदरा उमड़ घुमड़ होते रहते, सो वे पानी बरसा के अपने पेड़ को पानी दे दिए थे। तो बहनों एक पेड़ अपन को जरूर लगाऊ है, अब को लगाओ पौधा जल्दी लग जाते, ना तो मेहनत रहते और ना खर्चा, बस गड्ढा करो और पौधा रोप दो, एक दो साल में वो पौधा पेड़ बन जाए। मैनो पेड़ है तो बादल है और बादल है तो फसल है और फसल है तो घर में बरकत है। तो मैनो अपन सवाई को संकल्प लेने हैं कि हर साल अपन सवाई को दो चार पेड़ जरूर लगाने हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को उनके भविष्य सुरक्षित करवे के लाने। और अब सुनाते हैं जो पर्यावरण लोकगीत।

हमारी बहनें सुन रही थी पर्यावरण लोकगीत और गा रहे थे रमेश बाबू सोनी। और बहनों, बरसात के मौसम में आसमान से बरसने वाली बूंदे ढेरों खुशियां लेके आउत हैं और संगई संगई बहुत सी परेशानी भी आउती हैं। बहनों, मौसम कौनो भी होवे, हर एक मौसम सिखाऊ थे कि सुविधा के संगे समस्या भी है, तो समस्याओं के लाने सावधानियां बरतवी की जरूरत रहे थे। मनु, जैसे ही पानी बरसा थे सो ढेरों मक्खी मच्छर विषैले जीव जंतु जो रहे थे वे पनप जाते और उनमें अपन को अपने बाल बच्चों को बचाव करने होते। घर के आसपास अगर बहुत ही घास फूस हो गए है तो साफ सफाई करें, बाल बच्चों को भरे भरे पानी में ना खेलन कूनन देवे। मैंने बरसात के मौसम में एक बात और देखने के लाने मिला थे कि जैसा ही पानी बरसत है सो बाल बच्चा बाहर खेल कूद के नहान लगा थे, तो थोड़ो बहुत तो ठीक है मगर ज्यादा देर तक या फिर रोज रोज भी अगर नहाते हैं तो ऐसे में उन्हें परेशानी होने की समस्या हो सकत है। तो इन सब बातों को अपन को ध्यान रखने हैं। एक बाद मैंने एक बात और रहे थे कि जैसा ही छोटे मोटे पुखरियाँ वगैरह रहती हैं या पास को तालाब रहे थे जो नदी रहे थे तो उतने भी बाल बच्चा घर के बड़ों को बिना बताए चले जाते और उतने नहाऊ थे। खेल खेल में मैंने भी ऐसे कूदत हैं और शैतानी करन लगा थे कि अपन को समस्याओं को सामना करने पड़ जाते हैं। तो मैंने ऐसे में अपन को अपने बाल बच्चों को देखे रहने हैं कि कहूँ जो पास को तालाब है या नदी है या छोटी मोटी जो पोखरियाँ भरी हैं उनमें बाल बच्चा जाके कूद तो नहीं रहे हैं। इन सब बातों को मैंने अगर अपन ध्यान रखा थे तो बहुत सी समस्याओं से बच जाते हैं। इसके अलावा मैंने जब पानी बरसत है सो कुत्ता बिल्ली भी पानी से बचाव के लाने घरों में घुसन लगा थे, काहे कि जब भी गीले हो जाते हैं सोने लगन लगा थे कि चलो को अच्छी सूखी सी जगह में बैठ जावे। और मैंने एक लाने जब छोटे बाल बच्चा देखा थे कुत्ता बिल्ली सुबह उनके पास जाते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं स्नेह करते हैं या फिर उन्हें परेशान भी करने लगा थे। ऐसे में बहनों उनके नाखून की रगड़ लग जावे या फिर जहाँ मान लो छोटे बाल बच्चा को या फिर बड़ों को कोनो घाव है और उते वे चाट लेते हैं, मान लो घाव है और खून दिख रहा है तो उते चाट लेते हैं, तो बहनों ऐसे में उनकी लाने समस्या हो सका थे। तो सबसे पहली तो बात यही है बहनों कि अपने बाल बच्चों को समझा के रखें। माँ पापा को जब बात अपने बाल बच्चों को समझाओ चाहिए कि कभी ऐसी बात हो जाए तो सही सही बात बता के उस समस्या को समाधान हो सका थे। ऐसे में बहनों का होते कि जो उनके चाटवे से परजीवी रहते हैं उनके कीटाणु रहते हैं वो घाव में पहुंच सका थे या फिर जो उनके नाखून वगैरह बाल बच्चा को लग गए हैं उसे भी समस्या हो सका थे। ऐसे में बहनों तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके रेबीज से बचाव के इंजेक्शन समय से लगवा लेवे। ऐसी वे सभी जानकारी बाल बच्चों को देवे जो रोज की दिनचर्या में जरूरी रहती है। मैंने बाल बच्चों को हमेशा सच बोलवो सिखाएं, काहे कि मैंने सच्ची बात बोलवे से बहुत सी समस्याओं और परेशानियों से बच जाते हैं। कभू कभू बाल बच्चा कुत्ता बिल्ली के नाखून की खरोंच जो लग जाते हैं सो बाल बच्चा इंजेक्शन लगवावे के डर से बताऊत नहीं है, ऐसे में ज्यादा परेशानियों को सामना करने पड़ जाते हैं। तो मैंने जा तो बात करी अपन ने कछु सावधानियों की जिसे अपने बाल बच्चा सुरक्षित बने रहे। और अब हम सुनवा रहे हैं प्रमिला सागर को गाओ भाव जो लोकगीत।

तो देखो बहनों कितनो बढ़िया लोकगीत सुनो, प्रमिला सागर को गाओ भाव, सबसे बोलो मीठी बाणी। हो बहनों मीठी बाणी में भी सबई अपने रिश्ते नाते हैं वे अच्छे रहते हैं। और बहनों अब चलें अपन रसोई की तरफ है, काहे कि बहनों जब तक अपन रसोई की तरफ है ना जाएं अपनों ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम पूरो ना हो। तो बहनों आज आपको हम बता रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया से पराठा बनावे की विधि। अब हमारी बहनें सोच रही हैं कि पराठा में ऐसो का है, वो तो हम सभी जने बनाते ही रहते हैं, कभू आलू के कभू मूली के कभू गोभी के, ये सभी पराठा अपन बनाते ही रहते हैं। लेकिन मैंने आज हम कछु हट के बता रहे हैं, तो अपनी रसोई में आप जरूर बनाएं और सभी को खिलाएं। और मैंने जब सभी ऐसी चीज़ें जो हटके रहती हैं खाते हैं सो तारीफ तो जरूर ही करते हैं, तो यदि तारीफ आपको सुनने हो तो आज ही आप बना लो। कैसे जो समय मैंने जो अब चल रहा है कि आप रसोई में हो और नाश्ता की तैयारी कर रही हो, तो हम बता रहे हैं आज आपको एक रायता और बेसन प्याज के पराठा बनाने की विधि। तो बहनों आप ध्यान से सुने, सबसे पहले आपको गेहूं को आटा में थोड़ा नमक और थोड़ा सो तेल को मोइन डाल के मार के रख देने हैं, उसको गीले कपड़ा से ढांक दें। इसके बाद बहनों आप तीन चार प्याज लेवें और लच्छा में काट लें, माने बारीक सी नहीं काटने हैं। हरी मिर्ची लहसुन धनिया पत्ती भी बारीक काट लें। अब खड़ी धनिया काली मिर्ची जीरा इको हल्को दरदरों कूट लें या मिक्सी में एक बार में थोड़ो सो चला के दरदरों सो तैयार कर लें। इसके बाद बहनों आप कढ़ाई में थोड़ो तेल डालें और उसमें जो आपने खड़ी धनिया और कुटे जीरे कुटी काली मिर्च रखी है वह डाल देवे, आँच मध्यम रखें। डालने के बाद मैंने जब थोड़े से जे भुन से जाएं सो जो आपने कटो लहसुन तैयार करो है हरी मिर्ची तैयार करी है वह भी डाल दें। अब इनमें मैंने तीन चार चम्मच करीब छोटी चम्मच से बेसन डालें। जैसे ही बेसन भुन जाए, माने जो तेल डलो है तो मैं जैसे ही बेसन भुन जाए सो उनको कच्चोपन अलग हो जाए और जो आपने लच्छा वाली प्याज काट के रखी है वह भी कढ़ाई में डाल दें और अच्छे से चलाएं। कहे कि बहनों जब अपन प्याज डाला था और जो बेसन डलो है तो प्याज को जो पानी सो रहे थे सो वो बेसन सोख ले है और आपको जो भरावन तैयार हो जाए पराठा खिलाने। अब जो आपने आटा मार के रखो है उसमें थोड़ो सो हाथ में तेल लगा के उसको एक सो करें और लो बहनों आपको भरावन तैयार है। जैसे आप आलू के पराठा बनाती हो, गोभी के मूली के जाय के भी बनाती हो, और वैसे भरावन भर के थोड़ो सो हल्को परथन लगा के पराठा बेल लें और बस तवा में डालें घी से या तेल से जो भी आपकी मर्जी हो उससे सेंक के पराठा आपके तैयार हो जाए। मैंने पराठा तो तैयार हो गए हैं, अब खाने काय के संग है तो बनाएं बढ़िया सो रायता। अब रायता भी थोड़ो सो हटके आप बना सकती हो, जैसे कि दही को मथानी से मथ लें, अपने मन मुताबिक गाढ़ो पतलो आप रख सकती हो। अब इसमें आपको डालने हैं थोड़ी सी शक्कर, मैंने आप चाहें तो मिक्सी के जार में थोड़ी सी शक्कर डालें, धनिया पत्ती मीठी नीम जिसको अपन करी पत्ता भी कहते हैं, थोड़े से पुदीना के पत्ता, जीरा कालो नमक सफ़ेद नमक काली मिर्ची ये सभी चीज़ें मिक्सी के जार में डाल के पीस लें। अब जो आपने मथो भाव दही रखो है उसमें ये सभी चीज़ें डाल दें। लो बहनों आपको तैयार होगा बढ़िया सो रायता, चाहे तो आप जीरा राई और हींग को तड़का भी उसमें लगा सकती हूँ। मैंने हमें आशा है कि आप औरों को जो दही को रायता और प्याज बेसन को पराठा जरूर पसंद आए हुए। और अब हम सुनवा रहे हैं बुंदेल सिंह यादव को गाओ जो बढ़िया सो लोकगीत।

कहने सुनाई थी बुंदेल सिंह यादव को गाँव भाव लोकगीत। और बहनों अब देखो घड़ी की तरफ हो गई है चलबे की बेरा, तो आज्ञा दो ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त करवे की शशि को राम राम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ।

लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़े ही रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बद्रा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बद्रा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

इन बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घूमने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। गिर रहे घूमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज़ है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं। कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है। कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होते हैं जो पल पल अपना रंग और रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना। तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार उषा खन्ना हैं। और इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

तो आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बहाना का गीत जारी बदरा बैरीजा। एक बेहद खूबसूरत और भावुक विरह गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रियतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आएं। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने प्रिय के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

तो ये था आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना, पंडित भरतव्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

घेर घूंघट न छेड़ जट जाने दो भेट मुहे भैर देर निरखट समाज तोहे आए न लाज तुहे दगाबाज धक धक धक धक धक धड़के जिया थर थर थर थर थर कांप जिया और पत से पिया हट जा हट जा हट जा।

गोरी कमल किशोरी चंचल चकोरी एक गाँव किशोरी मैं हूँ नवल नवेली अल बेली नार समझाए थके तुहे बार बार मन छुई मुई करु कौन जतन छूते ही हाथ सुन लाए बद मेरा तन मुरारी मत छू मत छू मत छू

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृह लक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना। पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, और ये फिल्म का नाम है चा चा

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारे ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब हैं, है ना? बेकरार हैं, है ना? चलिए, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना? लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं, फिल्मी गजलें हैं, जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये शास्त्रीय गजलों की छंद, तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी और मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों, जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में, जहाँ हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है उदासी भी हो। लेकिन हाँ, जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहाँ गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे कि गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है, है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीफ यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं, www.facebook.com

com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें।

राह तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ, बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं हम हुए तुम हुए कि मीर हुए उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफ आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसी गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसने रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार शकील बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गज़ल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आँखों पर, हम उसका जिक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गज़लें चुनी हैं जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गज़ल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गज़ल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूँ। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गज़लें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियाँ जिसने आपको, आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियाँ हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियाँ बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश के हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी की गजल सुन रंग और नूर की सौगात किसे पेश करूं, मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत, भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल सीधे हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी। आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में एक गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है। ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट कर मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है। गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने। तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाए, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए, आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहाँ गजल है वहाँ ये भाव होते ही हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीले सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर के रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं। और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही है बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज़ है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गज़ल।

आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गज़ल में हमें नज़र आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम अब आपके जो उत्तर हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलत अजीज की गाई जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आई, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये

गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लता जी, तलत अजीज की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ, काफिया, मिसरा, गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज़्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूँ इस गज़ल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गज़ल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गज़ल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गज़ल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गज़ल न किसी की आँख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गज़ल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

तलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गैर फिल्मी गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी जहाँ फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गज़ल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गज़लें अंतर्मन की पीड़ा तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गज़ल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज़ में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आ रहा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गज़ल की ये गज़ल मैं आपको सुनवा रही हूँ। बोल है नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गज़ल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गज़ल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गज़ल की शर्तों में आती है। ये गज़ल उस नियम, वो दायरा जो है गज़ल का, उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गज़ल, फिल्म का नाम गज़ल, आवाज़ लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूँगी बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुए यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आँखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियाँ, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गज़ल क्या है आपने उसको महसूस किया। आज के इस कार्यक्रम को, इस सफ़र को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। जावेद अली की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म नकाब का गीत। बोल समीर के हैं और संगीत है प्रीतम का।

इशक ज़ादे। इस फिल्म का गीत सुनिए जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत लिखा है कौसर मुनीर ने और इसे संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार

0: हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि की विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हरदा में नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जबकि खंडवा, सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग ने रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और पारुना जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। झाबुआ में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनप्रतिनिधि से सीधे संवाद को सशक्त बनाने में आज सांसद गणेश सिंह ने सांसद सुविधा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है,

0: तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाए। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोंसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का 2 गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
3: मोहब्बत का हाथ।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी

0: पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से, लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काड़ेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

ग्यावास थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं, आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जानवी रंबाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये, इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का, और ये हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की, गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यह अवस्थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गुलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गुलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अरपा पैरी पार्वती राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दो गाना।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहेगी।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंख

0: आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सके।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
2: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
3: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
2: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीर सेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
0: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीतशाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राजप्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: लीजिए महाराज, इसने तो इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ विवश हो पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर देख लीजिए।
4: मैं क्या पूछूं जी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ अरे गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
5: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
1: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
1: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
2: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: आ, हा, हा, इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवाई की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
0: उपाय उपाय, हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
0: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
4: आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ,
2: अरे मालविका, तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
2: ओह, इस दुष्ट गौतम के नटखटपन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
5: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
2: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
5: जो आज्ञा।
2: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
0: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। आ हा, देखिए तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
1: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा से नहीं पा रहे हो क्या? ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं उतने ही कठोर होते हैं।
0: महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
1: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
0: चलिए झूला गृह की ओर।
1: झूला गृह की ओर?
0: हाँ हाँ। अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष्य में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
1: हाँ मान तो ली थी, परंतु
0: कैसी अचरज की बात है कि...
1: क्या हुआ?
0: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
1: क्या क्या मालिका आ रही है?
0: और क्या,
1: तो समझो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
0: लीजिए वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
1: आहा, ये सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
0: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज।
1: मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
0: लेकिन महाराज अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
1: मित्र हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
5: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ते तू मिलने की आशा। अरे हृदय तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। पूछे यूं सता कर तुझे क्या मिल रहा है?
1: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
0: महाराज आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
1: अरे ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
0: अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
1: अच्छा तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
0: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। लो सखी। हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप भी अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मन चाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढे।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये सात श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
1: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
0: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी, ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
1: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
0: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
1: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ।
0: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
1: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर दो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
0: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
1: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
0: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
1: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
0: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
1: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
0: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
1: ये प्रेम पगे शब्द
0: स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
1: सच?
0: फिर सखी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
1: अरे पगली, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे क्या सोच रही हो?
0: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
1: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावली का वाह! मित्र, बकुलावली का ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
3: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके

0: कोई अच्छा काम किया?
1: आई गौतम, महाराज भी?
0: क्यों री बकुला वालिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
1: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं।
2: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
1: सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
3: अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
2: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
4: मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण भी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
2: है। बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडी कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
2: हाँ।
3: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, थी कि चुनरिया पर ही आपको गीत लिखा?
3: नहीं, मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई, हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
2: आपस का
3: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ?
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊँगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊँ उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार
0: सानू जगह ही रहता था।
1: अरे,
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूँ। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है, मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं।
1: हाँ?
0: इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे

0: सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया और एक दिन मुझे फ़ोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज़ उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंद्र जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंद्र जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंद्र जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे।
1: हाँ,
0: मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: भूख
0: हैं, भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत।
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ,
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। वो मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा
0: तो
1: जी,
0: मैं बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊँगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल, और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजू शाह
0: पहली
1: ने।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गज़ल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना, दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है,
1: ओहो,
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ,
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें, ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बम्बई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि

0: वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। और ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है,
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो।
1: बर्दाश्त।
0: फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के
1: बिल्कुल,
0: कितने हैं,
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब।
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है, उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: मैं आ जाऊंगा,
0: दूंगा
1: वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे। और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी
1: नहीं।
0: बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए
1: जी।
0: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी
1: नहीं,
0: है आपने
1: नहीं,
0: और
1: नहीं, नहीं,
0: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना?
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़े आपके गीतों को?
1: नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
0: हाँ
1: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है।
0: हाँ।
1: तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको
0: लेता
1: ले
0: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता।
0: अच्छा।
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
0: अच्छा।
1: हमने कहा फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुँह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो गया अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज़ नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
0: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल लिखवा देते।
0: सिचुएशन बतानी पड़ती है या एक्टर?
1: हाँ, जो भी सिचुएशन बताएंगे
0: बहुत खूबसूरत
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है।
0: हर रिकॉर्डिंग में
1: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
0: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था। तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा,
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है। बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
1: जी, मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए। ये है आपका तेरी चुनरी बन।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी।
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी।
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक ख़ास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूज़िक कंपनी है ओडली के नाम से,
0: ओडली। अच्छा, यहाँ पर भी चुनरिया आई।
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी, मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र अभी आप
1: जिक्र
0: कर रहे थे।
1: किया। तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
0: अच्छा।
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो जी, है वो है।
0: जी, जी।
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या।
0: हाँ।
1: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए यार कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
0: वाह, अद्भुत,
1: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा।
0: हाँ,
1: लेकिन
0: सही
1: मेरी औकात ही क्या, मैं क्या करूंगा। कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
0: उनकी महानता देखिए आप अमित,
1: लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना
0: जी जी,
1: लेकिन उन्होंने क्लियर किया
0: कि मैं कुछ नहीं लेने
1: मैं कुछ नहीं लेने वाला।
0: बहुत बड़ी बात सर,
1: तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई है और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं।
1: एक गाना हम लोग सुनते हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: दे।
1: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत ये है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
2: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
1: गाना नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर? तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा? हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
2: बहुत सुंदर,
1: ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
2: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
1: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
2: जी,
1: तो
2: जी,
1: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
2: बहुत सुंदर, और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
1: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं एआई से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
2: अच्छा, लेकिन
1: बट एआई जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
2: सबसे बड़ी बात
1: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
2: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
1: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि उस वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
2: बहुत प्यारे तरीके,
1: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
2: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं, बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान ना समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
2: वो कालजयी हो गया,
1: हाँ वो ऐसा नहीं हो सकता है।
2: जी, जी।
1: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
2: जी,
1: देखिए आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया, तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा, और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल,
2: बिल्कुल।
1: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना, भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
2: बिल्कुल।
1: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही, तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
2: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया,
1: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया
2: दूसरे गाने का,
1: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
2: ओहो,
1: 97 में गाना बाहर आया ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था, परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ,
2: अच्छा,
1: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था, ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके उंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया, मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है, और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है, और बोलता है अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूँ तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ तब तक तू आ गया। वह जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा, ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपये थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो,
2: बिल्कुल।
1: तो कुछ ना कुछ
2: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
1: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
2: जी।
1: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सबसे मैं मिला हूँ
2: जी। और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
1: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
0: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। दोपहर के 5 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म आई मिलन की बेला का ये नगमा। शब्द रचना है शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आई मिलन की बेला का ये नगमा। और आई श्रोताओं, अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ों में कारवां फिल्म का ये गीत। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए फिल्म कारवां के इस नगमे के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये वृक्षारोपण पर कार्य करने वाले हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सोडा पर केंद्रित हैं।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए जी। और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
2: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है। अच्छा। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ।
2: अच्छा।
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहां की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहां बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़।

0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं,
1: जी
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे, वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम। और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अब भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव-गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पुलिस पूरी पुलिस को, पूरे क्रम

0: कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है, घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी पे लगा देते हैं और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो और भी सुविधाएं बढ़े और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे, वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं, बहने, युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव-गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे

0: राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश हो के देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला,
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने का प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो

0: वो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है कि पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूं, अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना है, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव पर, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है, जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ हैं, या गांव में पंचायत को मिलती है, या जिसके खेत में है, जगह में, उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ, देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं, अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम, या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से, जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं, और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता, गांववासी को जोड़ा जाता है, आ किस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में, 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए, और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया। मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही है तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा मानें।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast@airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: जी, आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल।

चंदन दास की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल। और रही श्रोताओं, अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में गुलजार का लिखा ये कलाम। संगीत जगजीत सिंह का है, इसे हमने मरासिम एल्बम से लिया है।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: इस अंतरण के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं परवेज मेहंदी की आवाज़ में इफ्तखार आरिफ का ये कलाम।

मेहंदी हसन की गाई इस गज़ल के साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जारी है प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: दोनों देशों ने सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी और मानव केंद्रित एआई के विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन और जापान की जेन संस्थागत सहयोग को भी मजबूत किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के रणनीतिक भंडारण, समुद्री ऊर्जा परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। वहीं पूरे देश में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बैटरी निर्माण और औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों ने नेक्स्ट जनरेशनल मोबिलिटी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इसके अंतर्गत रेल, सड़क, मानन, जहाज निर्माण, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश और औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने जापान से भारत में बढ़ते निजी निवेश का स्वागत किया और विकसित भारत के लक्ष्य में निवेश लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति की भी सराहना की। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA की समीक्षा, निवेश का माहौल और बेहतर बनाने तथा व्यापार को नई गति देने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत जापान SME फोरम की शुरुआत का स्वागत किया और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स, औद्योगिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर बल दिया। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए सड़क, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सेमीकंडक्टर, जैव ईंधन और संपर्क परियोजनाओं में जापान के सहयोग की सराहना की। दोनों देशों ने पूर्वोत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाले औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए भी अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।
1: श्रोताओं, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई ये पहले इस बात का संकेत है कि दोनों देशों की साझेदारी अब पारंपरिक सहयोग से

0: आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी, आर्थिक सुरक्षा, निवेश और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नए क्षेत्रों तक पहुंच रही है। आकाशवाणी समाचार ने भारत जापान संबंध और 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन पर जापान में भारत के पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई है तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए श्रोता, आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत। सदाबहार गीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अख्तर रूमानी का ये गीत। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

0: इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
1: इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार गीत में। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा है नगमा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के इस नगमे के साथ ही सदाबहार गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, हम सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं देशराज पटेरिया की आवाज में ये दादरा।

अभी आप सुन रहे थे देशराज पटेरिया की आवाज़ में ये दादरा, और आइए श्रोताओं अब सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज़ में ये चेतावनी लोकगीत।

चंद्रभूषण पाठक के गाए इस चेतावनी लोक गीत के बाद आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाज में ये दादरा।

लक्ष्मी त्रिपाठी के गाए इस दादरा के साथ ही लोकरंग का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजना चाहते हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदी में समाचार। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैसे मोहम्मद, लश्करे तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है।

0: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए श्रोता, हम अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज की और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8:20 पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रोज की ही तरह रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:30 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। आइए अब हम आपको कल के कार्यक्रमों के विषय में बता दें। कल सुबह 5:55 पर हमारी आकाशवाणी केंद्र की सभा आरंभ होगी। उसके बाद सुबह 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:05 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। 6:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। 6:30 का समय होगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ का, गायक स्वर होगा अनुराधा पौडवाल का। भोले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 6:40 पर। सुबह 7:00 सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। 7:05 का समय होगा कृषि संकेत कार्यक्रम का। 7:20 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे गागर में सागर कार्यक्रम। इस रेडियो पत्रिका का संकलन और निर्माण होगा सहबा नासिर का, संयोजन और प्रस्तुति होगी दीपक निषाद की। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:50 पर।

सुबह 8:15 पर सुनिएगा लोक संगीत कार्यक्रम। 8:30 का समय होगा बाल सभा कार्यक्रम का। सुबह 9 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:05 पर। शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं। संगीत सरिता का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:40 पर। शाम 6 सुनिएगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 6:15 का समय होगा संगीत सरिता कार्यक्रम का। सदाबहार गीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:30 पर। 6:45 पर सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम।

कार्यक्रम और शाम 7:05 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण। इसी के साथ कार्यक्रम संबंधी जानकारी अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इंदौर में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ किया संवाद और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खिलौने के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय विज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग $120 अरब है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने की सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज कहा कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि

0: योजना 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में सुविधा प्रदान करेगी। इससे लाखों लोगों की हवाई यात्रा का सपना साकार होने के करीब आएगा और एक उभरते हुए भारत की आकांक्षाओं को जोड़ा जा सकेगा। समाचारों में वक्त है अब एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार ने आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। इंदौर पहुंचने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों BLO ने मिलकर SIR का काम बहुत अच्छा किया है।
1: हम मध्य प्रदेश के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, और आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहना चाहूंगा कि इस बार जो भी हमारे चुनावी कर्मियों ने CEO साहब के नेतृत्व में डिविजनल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, ERO's और BLO's ने मिलकर इतना बढ़िया SIR का कार्य किया है, जिसके ऊपर पूरे देश को नाज है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओमकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने आज रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री श्री परमार इसके बाद सीधा रीवा इंजीनियर और रीवा आयुर्वेद कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में सम्मिलित हुए। इस मौके पर प्रश्न पत्र चोरी होने के कारण BTEC चौथे सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित होने पर उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित की गई है, संबंधितों के खिलाफ FIR कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितग्राहकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैतूल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सम्मिलित होंगे। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू निरोधक माह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक मनाया जा रहा है। पन्ना जिले के प्राचीन मंदिरों और निजी संग्रहों से 64,000 से अधिक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां खोजकर ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड कर दी गई हैं। नीमच के रेड क्रॉस भवन में 6 जुलाई को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और धार, खंडवा, रायसेन और आगरमालवा जिला मुख्यालय पर सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। आयुष श्रोताओं, अब सुनते हैं किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैयाहरों को हमारी जय जय राम जी की पहुंच जाए। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको जो संदेश सुनवा रहे हैं,
1: इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
0: इस अंतराल के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है किसान वाणी कार्यक्रम में। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं ये वार्ता।
2: किसानी के क्षेत्र में लगातार आधुनिक साधन संसाधन हम किसान भैयाहरों को प्राप्त भए हैं। कई प्रकार की रोग या कीटों से निपटने की दवाएं भी हमें कृषि के वैज्ञानिकों ने दी हैं, मगर इन सब के बावजूद भी हम किसान भैयाहरे एक पक्के कार्यक्रम के तहत अपनी किसानी को जो है लिखा पढ़ी में तब्दील नहीं कर पाते। माने अपन जो भी किसानी में करते हैं वो को एक पक्को लेखा जोखा अगर अपन रखें तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं किसानी में जो आसान हो सकते हैं, जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय पे चर्चा कर भी आज अपने स्टूडियो में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी पधारे हैं। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं द्योरी में। डॉक्टर साहब आपको हमारे स्टूडियो में खूब ही खूब स्वागत है। और जैसे कि हमारे किसान भैया हरे किसानी में लगातार नए नए तौर तरीका अपना रहे हैं, प्रगति भी कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं दिनों दिन बढ़त चली जा रही हैं, तो वो कोई एक मुख्य कारण जो रहो है किसानी में शुरू से आखिर तक खाद उर्वरक या दवाई जोन जोन रूप में भी उपयोग कर रहे थे उनको लेखा जोखा भी कबो नहीं रख पाते, तो एक एक का नुकसान हो सकते हैं, और लेखा जोखा अगर भी रखें तो कौन कौन से फायदा उनको प्राप्त हो सकते हैं, ये विषय पर जानकारी देवें।
3: देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे किसान भाई जो कृषि कार्य करते हैं उसका लेखा जोखा नहीं रखते। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि हमें कितनी हमारी लागत लग गई इस लागत की जानकारी नहीं होती। दूसरा, अगर कभी खेती किसानी में बीच में कोई समस्या आती है तो ये पूछा जाता है कि इसके पहले आपने क्या किया था, तो वो भी उनको अच्छे से याद नहीं रहता। तीसरी बात ये कि हमने कौन सी किस्म बोई, कितना खाद डाला, कौन सी दवाएं डाली, इन सब की कोई जानकारी नहीं होती है। किसान भाई को कोई समस्या आई वो किसी से संपर्क किया, नहीं संपर्क किया तो जाके दुकान में गए और अपनी समस्या के समाधान के लिए दवाई कीटनाशी जो भी लाए और उनका उपयोग कर लिया। फिर कभी वो समस्या आती है तो फिर जब तक हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो चूंकि हमारा प्रमुख जो कार्य है वो कृषि कार्य है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी, और हमारे खासतौर से बुंदेलखंड में कृषि ही हमारा हमारे किसान भाइयों का प्रमुख व्यवसाय है, तो व्यवसाय में हमें लेखा जोखा रखना बहुत आवश्यक है। इसको हम लोग कहते हैं कल्टीवेशन बुक, माने खेती की लागत से लेके बिक्री तक के बीच के जो लेखा जोखा के कार्य है उसको हम एक अपनी इन्वेंट्री बनाते हैं, एक लेखा जोखा पुस्तिका बनाते हैं कि हमने कब बुआई की, कौन सी किस्म का उपयोग किया, कब हमने उर्वरक और खाद कितनी मात्रा में डाले, कब हमारे यहाँ कीड़ों का प्रकोप हुआ उनके लिए हमने कौन सी दवाई डाली। ये सारा लेखा जोखा यदि आप रखेंगे और कई वर्षों तक इसको रखते जाएंगे तो आपको अपने स्वयं के अनुभव इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, और आप स्वयं अनुभव से अपना लिखा हुआ देख के और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि हम मिट्टी की जाँच कराएं। मिट्टी की जाँच कराने के लिए जो प्रयोगशालाएं हैं वहाँ नमूना दें और उसका फॉलो अप करें कि हमारी रिपोर्ट कब मिलेगी। रिपोर्ट लेने के बाद भले ही आप उतना उर्वरक ना डालें लेकिन कम से कम आपको आपकी जमीन में नत्रजन फास्फोरस पोटास की क्या मात्रा है और उससे हमें क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है, कितना उर्वरक डालना है, ये जानकारी आपको जरूर मिलेगी। तो जब ये जानकारी आपको रहेगी तब आप निश्चित तौर पर उसके अनुसार खाद उर्वरकों का उपयोग करेंगे। नंबर दो, हम कोई भी किस्म बोते हैं तो हम उस किस्म का नाम जरूर पूछें जिससे भी हमने ली, चाहे हम निजी विक्रेताओं से लें, चाहे शासकीय संस्थान से लें, चाहे हम किसान भाइयों से भी आपस में लें, तो उनसे उसका नाम पूछें और नाम पूछ के उसके करैक्टर को, उसके गुणों को जानें। उसके करैक्टर और उसके गुणों को जानने के बाद हम स्वतः इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इसमें क्या समस्या आ सकती है। तीसरी बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो हमारे खेत में कौन कौन से खरपतवार आ रहे हैं, इस साल कौन से आए, पिछले साल कौन से आए थे, तब आप स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ धीरे धीरे कौन से खरपतवार हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके नियंत्रण के लिए आप फिर उपाय करेंगे। और चौथी और महत्वपूर्ण बात है कीटनाशी फफूंदनाशी इनके छिड़काव का। आपको दो प्रकार की दवाइयों को मिला के उपयोग नहीं करना यदि उसकी जानकारी नहीं है तो। एक बार में आप एक दवा डालें, दूसरी बार में दूसरी दवा डालें, और जो दवा का उपयोग आप चाहे कीटनाशी का करें या फफूंदनाशी का करें उसका नाम जरूर आप नोट कर लें। भाई हमारे किसान भाइयों को इतना संभव नहीं है कि सबके नाम याद रख सकें, लेकिन हम नोट तो कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़े एक डायरी में हम उसको नोट कर लें और उस डायरी में से उस नाम को देख के हम फिर जिससे भी हम हमसे कोई पूछ रहा है या हम किसी से पूछ रहे हैं तो उसको नाम बता सकें हम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आखिरी में हमें कितना उत्पादन मिला और हमारी कितने में बिक्री हुई, तो अगर हम ये सारा रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इस जगह पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई या इस जगह पे हमसे चूक हो गई जिसकी वजह से हमारे उत्पादन में कमी आई, या इस जगह में हमने कोई बहुत अच्छा काम किया था तो हमारा उत्पादन बढ़ गया और उत्पादन बढ़ने से हमें ये लाभ हुआ। तो आगे के वर्षों में उन अनुभवों के आधार पर आप बहुत अच्छे से कल्टीवेशन करेंगे। दूसरी बात ये कि जब हम लेखा जोखा रखेंगे, चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे, तो हम उनको अपडेट करने के लिए निश्चित तौर पर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनेंगे, दूरदर्शन के कार्यक्रमों को सुनेंगे, और भी जो कृषि संबंधी पत्र पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। और अब आपकी रुचि इस तरह के कामों में विकसित होगी तो निश्चित रूप से आप नवाचार के लिए भी सोचेंगे, नई तकनीकी के बारे में भी सोचेंगे, जिससे आपको जो परंपरागत चीज़ें हैं उन परंपरागत चीज़ों से हटके कोई नई चीज़ करने का मन में बात आएगी। देखिए अगर हम बात करें, आज हम 2021 में हैं, 10 वर्ष पूर्व हमारे ज़िले में भी लोग खुली सिंचाई करते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ, धीरे धीरे तकनीकी आई और आज ज़्यादातर किसान भाई स्प्रिंकलर का उपयोग कर रहे हैं। या सब्जी लगाने वाले किसान हैं तो ज़्यादातर किसान भाई हमारे ड्रिप की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस तकनीकी का प्रचार प्रसार हुआ, उस तकनीकी के प्रचार प्रसार में किसानों ने भी देखा कि हमें इससे इतना फ़ायदा है, इससे इतना घाटा है। तो जो तकनीकी किसान भाइयों को फ़ायदा पहुंचाती है निश्चित तौर पर उसका अंगीकरण भी होता है। तो आप भी अपनी कृषि कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए उनका लेखा जोखा बनाएं। दूसरा, जो पशुपालन आपने किया हुआ है उसका भी आप लेखा जोखा बनाएं, कितना हम उनके लिए कंसंट्रेट फीड खरीद के लाए, कितनी चीज़ हमने दवाइयों में खर्च की, कितना रुपए दवाइयों में खर्च किया, कितना दूध हमें प्राप्त हुआ, भले ही हमने उसको घर में उपयोग किया हो या उसकी बिक्री की हो। घर में उपयोग किया मतलब आपने पैसे की बचत की, और यदि आपने बिक्री की तो नगद पैसा आपको प्राप्त हुआ। तो जब हम इस तरह का लेखा जोखा रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में, आपके मन में ये बात आएगी कि हमारे जानवर हमें और बेहतर दूध उत्पादन कैसे प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा उनका जो गोबर है, उनके जो कृषि अवशिष्ट हैं, उनकी जो नीचे की बिछावन निकलती है उसको इकट्ठा करके उसकी अच्छी किस्म की जैविक खाद बनाएं, जिससे आपको जो उर्वरक खरीदने में पैसा खर्च होता है वो आपका कम होगा। तो इस प्रकार से जब हम पूरी चीज़ों को व्यवस्थित करें
2: जी,
3: तो निश्चित तौर पर आपको खेती में किस जगह की वजह से, किस घटना की वजह से, किस समस्या की वजह से नुकसान हो रहा है, स्वयं आप विचार करके उसको बेहतर और बेहतर आप उत्पादन लेने का प्रयास करेंगे। कई किसान भाई अभी बात करते हैं फेंसिंग की, जानवरों से होने वाले नुकसान की, उसके लिए जो लाइव फेंसिंग आती हैं, जैसे मान लीजिए हम किनारे किनारे में बरसात शुरू हो और उस समय हम करौंदा लगा सकते हैं, वहाँ पे नींबू के पौधे लगा सकते हैं किनारे किनारे में, जिससे कुछ समय बाद ये नींबू और करौंदा के पौधे बड़े हो जाएंगे, इन पौधों से हमें फल भी प्राप्त होंगे और उसी के किनारे किनारे हम उसको फेंसिंग कर लेंगे या बाड़ी लगा लेंगे, जिससे हमारा जानवरों से नुकसान नहीं होगा। तो ये ऐसे उपाय हैं जिनको हमें एक चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करना है। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, एक दिन में हम सारी खेती की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे अनुभवों के आधार पर ही कृषि को हम

0: और बेहतर बनाएं। जो किसान भाई केवल फसलें लेते हैं वो थोड़ी सब्जियां भी लगाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे रेट प्राप्त होते हैं और बहुत अच्छे उनसे दाम प्राप्त होते हैं। भले ही आपके पास पानी की कमी है तो कम पानी में हम ड्रिप का उपयोग करके, स्प्रिंकलर का उपयोग करके सब्जियों को लगा सकते हैं। सब्जियों में जैसे बरसात में होने वाली सब्जियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको मेड़ बना के उसके ऊपर रोपाई करते हैं और मल्चिंग कर देते हैं, मल्चिंग जरूरी नहीं कि आप पॉलीथिन की मल्चिंग करें, वो कॉस्टली है, आप जैविक मल्चिंग के रूप में धान का पैरा है, गेहूं के डंठल हैं, मक्के की कड़पी है, ज्वार की कड़पी है, डंठल जो ज्वार के हैं उनको ज़मीन में बिछा के आप मल्चिंग का काम कर सकते हैं, जिससे वो कालांतर में खाद भी बन जाएंगे और खरपतवार भी हमारे यहाँ नहीं होंगे। तो आपको जैसे बरसात में प्याज, अभी हमारे क्षेत्र में बरसात में प्याज लगाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है, तो हम बरसात में प्याज की फसल है या थोड़ी लेट में अगस्त के बाद हम प्याज की रुपाई करके हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आलू बरसात के बाद हम ठंड जैसी शुरू होती है शुरुआत में ही आलू लगा दें तो कम पानी में भी आलू से अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ हैं वहाँ पर लहसुन है, वहाँ पर टमाटर है, वहाँ पर मिर्च है, इनकी खेती हम जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं उनके साथ साथ हम इनको करके बेहतर लाभ ले सकते हैं। और पशुपालन एक हमारा एक बहुत नित आमदनी, प्रतिदिन की आमदनी के लिए एक अच्छा विकल्प है। हम अच्छे नस्ल के जो पशु हैं उनको ना लेके कम से कम नस्ल सुधार कार्यक्रम के दौरान हमारे जो खुद के पशु हैं उनकी नस्ल सुधार करके हम कृत्रिम गर्भाधान करा के अच्छे नस्ल के जानवर प्राप्त करके उनसे आगामी वर्षों में आप दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
1: ज्या तो हो गई डॉक्टर साहब, एक प्लान या लेखा जोखा के तहत हमें किसान भैया रखो किसानी में लाभ की बात, दूसरी एक बात और भी रहा था कि आज के समय में जो है किसान भैया रखो ढेर सारी सुविधाएं मिली हैं, खास तौर पे प्रशिक्षण से जुड़ी भाई सुविधाएं आपके केंद्र अनुसंधान केंद्रों से मिल रही हैं। तो हमारे किसान भैया हरे बहुत बड़ी तादाद में इन प्रशिक्षण केंद्रों से, इन अनुसंधान केंद्रों से लाभ नहीं ले पा रहे, तो हमारे किसान भैया रखो प्रशिक्षण लेवे से कौन कौन से लाभ होते हैं आपके केंद्रों से, विभिन्न कार्यक्रमों से कृषि से जुड़े, ये बारे में और जानकारी देवे।
0: देखिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, सागर जिले में दो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं, एक सागर में ही है और एक देवरी में अभी प्रारंभ हुआ है भारत सरकार से। इन केंद्रों में हम एक तो किसान भाई जो भी हमारे यहाँ आते हैं, जिनके हम संपर्क में होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कई ग्रुप बने हुए हैं किसान भाइयों के, कोई सब्जी उत्पादन वाला ग्रुप है, कोई फसलों वाला है, कोई जैविक खेती वाला है, तो उन मोबाइल नंबर के माध्यम से हम ग्रुप के माध्यम से उनको समय समय पर जानकारी देते हैं। दूसरा हमारा एक किसान मोबाइल संदेश है, वर्तमान में हमारे पास करीब 80,000 लोग रजिस्टर्ड हैं और उनको हम महीने में 2 या 3 बार खेती किसानी से संबंधित SMS भेजते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है हम लोगों को, तो जो भी किसान भाई हमारे संपर्क में आते हैं उनके हम मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं और उनको धीरे धीरे हम जोड़ के उसको लाभ पहुंचाते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ कम से कम महीने में 2 या 3 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे केंद्र पे भी और केंद्र के बाहर भी ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे अंगीकृत ग्राम हैं या ऐसे किसान भाई जो हमारे बीच में संपर्क में आते हैं और वो अपने गाँव में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उनकी इच्छा होती है, तो हम लोग उनके साथ प्लान बना के और गाँव में जाके उनको खेती किसानी की जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार के प्रशिक्षणों से निश्चित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोई भी योजना हो, कोई भी चीज हो, प्रशिक्षण का अपना एक विशेष महत्व है और हम लोगों के प्रशिक्षण होते हैं, महीने दो महीने में कोई ना कोई हमारा विभागीय प्रशिक्षण होता है और उसमें नई नई जानकारियां बता दी जाती हैं। तो जब हमें जानकारी होगी, ज्ञान होगा प्रशिक्षण के माध्यम से या हमने किसी और माध्यम से, तब निश्चित तौर पर हम उसको उपयोग करने का प्रयास करेंगे और प्रशिक्षित व्यक्ति ही अच्छे तरीके से किसी तकनीकी को अपना सकता है। तो प्रशिक्षणों से निश्चित तौर पर लाभ होता है। हमारे किसान भाई कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा खुरई में एक कृषि महाविद्यालय है और रहली में हमारा उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित हुआ है। वहाँ भी हमारे साथी वैज्ञानिक है, वहाँ जाके भी हमारे जिले के किसान भाई जानकारी ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
1: जी जी, बहुत उपयोगी चर्चा, खास तौर पे किसानी में लेखा जोखा और प्रशिक्षण से जुड़ी भाई भाई, निश्चित रूप से मैं किसान भैया हरें इन सब बातों को अगर ध्यान रखें तो लगातार प्रगति, उत्पादन में वृद्धि और किसानी को लाभ को धंधो बना सकते हैं। आज के अपने कार्यक्रम में इस विषय पे बहुत उपयोगी जानकारी डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी ने हम किसान भैयारों को दी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान भैयारों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, किलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखियो माला करो, बहुत ही उम्दा जानकारी अपने लाने मिल गई और नीरज भैया ने बड़ी बारीकी से

0: जा जानकारी ले लई काहे से कि देखो मौसम बदल रहा है और मौसम को अपन कछु नहीं कह सकत कि कब तर बदरा हो जाए। जोन हिसाब से अबे जोन हिसाब को पानी गिर रहा है ये हिसाब में अपन को कौन सी बोनी करो चीजी और अपन कितनी बोनी कर चुकी हैं और कहाँ कहाँ दुबीजों की समस्या अपन को आई है ये पे अपन चर्चा और करें। पहले अपन सुन लेते हैं जो संदेश।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जो

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: मलखरो कार्यक्रम के ए भाग में सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। जैसो कि अबे अपन ने भेंट वार्ता में सुनो, खेती किसानी में लेखा जोखा को महत्व जा बात बिल्कुल उम्दा कहानी के, जोन हिसाब से मौसम चल रहा है वो हिसाब में अपन को किसानी को कौन तरीका से आगे बढ़ाओ जज्जे जी में अपन को पड़ता लग सके। जहाँ तक अपन बात करें वर्तमान समय की, कि जोन हिसाब से पानी चल रहा हो, क्या हो कैसो मूसलाधार बरसात हो रही है, अगर मालवा अंचल और निमाड़ तरपे की बात करें, और अगर अपन अपने इते की चर्चा करें तो इते की कहानी जा कहा है कि कहूँ तो पानी गिर रहा है, कहूँ दिन भर बूंदाबांदी हो रही है, जैसो लग रहा है कि डोंगरे गिर रहे कि बस कारो जाया रहो हो का रहो है, कछु निश्चित समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समय में वैज्ञानिकों को कहवो है कि कम अवधि की फसलें जैसे कि मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, तिली, रमतिली, अगर इनकी अपन खेती कर पा रहे हो, और एक मामले में एक खास बात को ध्यान रखो जरूरी कहानो कि जमीन अपनी भरत ने हुए भरेल बिल्कुल ने हुए, और अगर मेड़ नाली पद्धति रिच फेरो सिस्टम अगर ऐसे अपन बोनी कर पा रहे हैं तो निश्चित अपन को लाभ मिले। जहाँ तक मूंग की बात करें अपन, तो मूंग 65 से 70 दिन में आ जाते हैं, माने जा बात कहा है कि आज कहानो अपनो सनीचर 4 जुलाई, अपन चाहें तो मूंग उड़दा इनकी बोनी 15 तक तो कर ही सकते हैं, और अगर लज्जा मार अच्छे से कल ही हो गए तो एक ही बाद भी अपन बोनी कर सकते हैं, चाहे अपने लाने उपज कम आए, मतलब जो निश्चित हो जाए है कि अपने लाने पड़ता जरूर लग है, ऐसो के जोन भी पत्ता गिर हैं भी खाद बन है, और जोन किसान भैयारों को लगत है कि जमीन भरेल है उते कछु नहीं हो पाने या फिर कम पानी गिरो, तो अपन अपने तरफ से कम अवधि को सोयाबीन भी 10 तक तो बोनी कर ही सकते हैं, जैसो कि वैज्ञानिकों को कहवो है। अब रमतिली तिली की बात कहानी, तो निश्चित है कि अपन जोन बिल्कुल ढालू खेत हैं उतर जरूर बह देवे, खेती को उम्दा सुधार होते, और जब समय आ है रबी के टेम पे अपन सबसे पहला फार्म की, अगर गेहूँ की बात करें तो फार्म C306, अगर दलहन तिलहन की बात करें तो ओ में अपन अलसी, दलहन में मसूर, चना तो अपन बाद में भी बह सकते हैं, तो निश्चित मान के चलो कि ये मौसम में जो हिसाब को पड़ता अपन को नए लग पे है, जड़कारे में रबी के मौसम में निश्चित पड़ता लगे, ध्यान भर जो धरने कहा हो कि अपने लाने अपनी जमीन के हिसाब से मौसम को देखत भाई अपन कौन से काम अपने अनुभव के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुने लेते हैं बहुत ही उम्दा सो एक लोकगीत एक हूँ गा रहे हैं मानक लाल कछुआ।

देखियो मालक रब बहुत ही उम्दा सो अपन ने जो विदाई गीत सुन लो ये खो गा रहे थे मानक लाल कछवा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते और प्रगतिशील किसान जैसो कि सनीचर कहानो अनुभवी किसान कहाने बहुत ही उम्दा जानकारी दी है राज किशोर मिश्रा जी ने जी अपने अनुभव में कौन हिसाब से खेती किसानी कर रहे हैं किसानी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और कम लागत कौन तरीका से कर रहे हैं का ऐसे कि किसानी तो अपन कर ही रहे हैं किसानी में लागत को भी कम कैसे कर लेवे जैसे खाद के लाने अपन जरूरत से ज़्यादा फिर रहे हैं परेशान भी रहो के बाद भी अपन खो खाद की वो हिसाब से व्यवस्था नहीं हो रही मन के हिसाब से तो अपन सुने लेते इनके का अनुभव कहानी। आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में समय समय पे जागरूक

0: प्रगतिशील किसान से अपन चर्चा करत हैं। ऐसे ही बड़ी सौभाग्य की बात कहानी कि आज अपने बीच अनुभवी और जागरूक किसान से मुलाकात हो रही है। अपन उन्हीं से जाने लेते हैं उनको परिचय। जयराम जी भैया,
1: किसान वाणी सुनवे बारे सभी किसान भैया घरों के लाने और आप सब लोगों के लाने जयराम जी राम राम। भैया हमारा नाम है राज किशोर मिश्रा और रेवे बारी कहाने गांव पथरिया जाट की।
0: तो मिश्रा जी आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। और मिश्रा जी आप जा बताओ कि आप कितने समय से खेती कर रहे हो?
1: भैया 35 साल हो गए खेती करत करत।
0: पहले की खेती देखी हती कि गुणवत्तापूर्ण अनाज गुणवत्तापूर्ण साग भाजी मिलत थी, और आज के समय में गुणवत्तापूर्ण साग भाजी और अनाज निकालवे के लाने किसान भैया कौन सी बातों को ध्यान रखें?
1: हाँ भैया, जो बहुत अच्छा प्रश्न करो आपने। पहले के जो स्वाद हते फल और अनाजों में सब्जियों में भी अब नहीं रहे। कैसे अब जो है ज्यादा रसायनों का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। और अब अपन घूम रसायनों को प्रयोग कम करके थोड़ा सो ध्यान पुराने परंपरागत तरीका जैविक खेती जैसे गो आधारित खेती जो करते उन पे थोड़ा सा ध्यान देने पड़े। उससे अपनी लागत भी कम हो जाए है और फल सब्जी अनाज सबको स्वाद भी अच्छो हो जाए है, संपन्नता भी आए। और जो गइयों की आज दुर्दशा हो रही है रोड पे छोड़ दई लोगों ने, वो भी बंद हो जाए। अगर आप दो गइयें भरपाल के रखो और उनको गोबर और गोमूत्र को सही तरीका से उपयोग अपने खेत में करो तो आपकी खेती की लागत हर साल थोड़ी थोड़ी कम हो जे है और आप जो है रसायन मुक्त खेती और संपन्न किसान की तरफ आप चले जाएं। तो जैविक खेती करवे के लाने भैया हरो बहुत ज़्यादा खर्चा करवे की जरूरत नहीं है। सबसे शुरुआत में आप गोबर की खाद बनावे को बहुत अच्छा एक तरीका, आप जो है थोड़ी सी ऊंची जगह पे जहाँ से बरसात को पानी बहके अपने खात में न भरे, गैया को मूत्र और गोबर दो ही इकट्ठे करके रखो। मूत्र में सारे सूक्ष्म पोषक तत्व तो पाए जाते हैं और वो में जो है बीमारियों से बचाव की क्षमता भी है फसल को। वो में जंतुघ्न गुण भी पाए जाते हैं जो कीटों से भी बचाते फसल को। अच्छा, गोमूत्र और गोबर को मिश्रण बना के अपन को ऐसी जगह रखने हैं जहाँ बरसात को पानी वो के पोषक तत्व तो बहा के नहीं रह जाए, बरसात को पानी सीख धोने पड़े। भले ही आप एक चबूतरा सो बना लो, चार थुनिये गड़ा के ऊपर बरसाती डाल के छाए कर दू और धूप भी नहीं लगे गर्मी की,
0: माने तेज धूप तेज
1: घामों भी लगे तो भी उसमें जो भी बैक्टीरिया है वे खत्म हो जाए। तो गैया के गोबर में भैया सब किस्म के बैक्टीरिया होते जे मर नहीं पाए, जो ध्यान रखने अपन को।
0: माने कुल मिला के जा बात कहा है कि एक तो ओमे से पानी बाहर न जाए और दूसरों में तेज घाम होने
1: लगे। अच्छा साहब, बहुत बड़ो ढेर भी नहीं लगाने, बहुत बड़ो ढेर लगे हो तो वो धधक जे, गर्म हो जाए तो भी बैक्टीरिया
0: मर जाए।
1: और ओके लाने अपन को समय समय पे 15-15 दिन के अंतर से चलाते रहे, 2 फुट से ज्यादा ऊंचो ढेर न लगे, वो 15-15 दिन के अंतर से टारत फेरत रहे जी में वो गर्म नहीं हो पाए धत के नहीं, अच्छो पच जाए और बोरबोरो हो जाए।
0: माने कुल मिला के जीव जंतु में बने रहे और अपनो खाद जीवाणु युक्त बनो रहे,
1: गर्म नहीं हो पाए, गर्म हुई है तो गड़बड़ हो जाए।
0: बिल्कुल
1: अच्छा चलावे फिरावे से बोरबोरो हो जाए तो बहुत अच्छो खाद। भैया एक खाद में अपन किला ने बरगद पीपर उमर पेड़ के नीचे की मट्टी और फल आपको डारवे के 1 महीना से 15 दिन के अंतर से मिला देने, जब डारन लगे हो गए 1 महीना पहले या 15 दिन पहले जो भी संभव हो मिला के रख देने, जे में जी वही में पच के मिल जाए। इनमें इतने सारे जीवाणु इतने सारे रहते हैं कि बहुत अच्छी उपज बढ़ाते हैं खेत की। इनको आपको अगर अनुभव करके देखने हुए तो आप इनको थोड़ा सो बना के और खेत के बीचों बीच एक 20 फुट की पट्टी में डाल के देख लियो, आपको समझ में आ जाए कि कितने इनमें उपजाऊ क्षमता बढ़ावे की वो है सकती है।
0: माने जा बात कहे कि ऐसो आप प्रयोग करके देख ले, प्रैक्टिकल करके देख ले कि एक लाइन में सीधो डाल दो तो पिसिया हो चाहे कोनो भी फसल हो अलग से देखे, एक लाइन अलग से देखे।
1: फसलों में जो रोग आते हैं जी चाहे फफूंद के रोग हो जंतुघ्न रोग हो,
0: फफूंद भी नहीं लगे,
1: हाँ गोमूत्र संग है ये में। तो जी इन सब चीजों से इसकी रक्षा करें साहब, जितनी राख हो वह बिल्कुल न फेंको, इसी में मिला लो संग।
0: अच्छा,
1: जब डारन लगो
0: हो।
1: राख में भी जी सब लक्षण हैं गुण हैं, इसमें पोषक तत्व भी हैं, एक संग ए में रोगों से लड़ने की क्षमता भी है और छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा भी मार दे जो नुकसान करते हैं।
0: तो जब बहुत महत्वपूर्ण बात कहानी के पीपर उमर और बरगद के नीचे की माटी भी लेने हैं, इनके फल भी लेने हैं और जो पची भाई खाद है वो मैं मिलाने हैं 15 से 1 महीना पहले और वो के बाद में खेत में डालने
1: खेत में डालने
0: मानो ऐसे जो ना रासायनिक खाद है डीएपी होगा एनपीके होगा जी तो जी कितने कम हो जाते
1: 30% तो आपके पहले साल में कम हो जाते धीरे धीरे जैसे ही आप एक और डालत जे हो तो और कम हो जाए। एक और सशक्त बनावे के लाने बहुत अच्छे उपाय बताएं। एक नील गाय को गोबर आप ले आओ,
0: जंगली गाय
1: जो होते नील गाय को गोबर आप ले आओ और वो आप घोल के में और मिला दो घोल बना के उनको एक ही जगह पे गोबर करते हैं तो एक बोरी गोबर एक जगह मिल जाते वो भी जहाँ ताजो बनो हुई घोल के पानी में घोल के खाद में मिला तो और ज्यादा ताकतवर हो जाते जो। तो भैया ये सब कुछ फ्री की चीजें हैं, इनको उपयोग करो और अपनी उपज बढ़ाओ और खर्चा कम करो।
0: बड़ी बात रखें अपन मिश्रा जी, तो 1 एकड़ में ऐसा कितना खाद डालने पड़े?
1: हाँ जा बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आप जो लोग कहते हैं भैया तो खाद कहाँ से ले आए, तो भैया 1 एकड़ के लाने जो जो खाद अपन बना रहे हैं जो 2 क्विंटल ही काफी है।
0: अच्छा,
1: जो सिर्फ जैसो अपन सुपरफास्फेट या यूरिया खेत में फेंकते हैं भाई, हम टारवे फेरवे की बात कर रहे हैं जिसमें जो भुरभुरो बन जाए, बिर्रावे में आसानी हो जाए, बहुत ज्यादा जगह में हो जाए, तो जो 2 क्विंटल ही काफी है आपके खेत में
0: 1 एकड़ के लाने 2 क्विंटल खाद भर बनाई और पहले साल में 30% रासायनिक खाद कम हो गई,
1: भूमि जनित रोग कम हो जाए, फफूंद के रोग कम हो जाए तो अपनी दवाइयां कम लग
0: गई। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे साल में कितने परसेंट पे आ जाए?
1: दूसरे साल में तो आप जो खाद फिर से डालते रहो तो 50% आ जाए। भविष्य में जाके अगर आपको कछु चीजों की जरूरत पड़े, जैसे भविष्य में जाके पोटास कम हो गई मिट्टी परीक्षण करवावे के बाद, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास 3 मुख्य पोषक तत्व चाहिए पड़ते हैं भैया। जितो भी फॉस्फोरस युक्त खाद अपन ने अभी तक डाले खेतों में, इनको आधो तो अपने खेतों में अभी भी पड़ो है, बरसों से भंडार तैयार है, आधो ही खेतों में पौधों को मिलत है, वो है सुसुप्त अवस्था में। तो अब आप बैक्टीरिया अगर दे हो तो वो घुलनशील अवस्था में होके पौधा को उपलब्ध हुई है और आपको खर्चा बचे।
0: माने जो बात कही कि उनको कल्चर के माध्यम से अपन बढ़ा सकते हैं कि पीएचपी मिला दे तो फास्फोरस घुलक बैक्टीरिया हो गए हैं, तो वे फास्फोरस जो मिट्टी में ऐसे ही पड़ो है सुसुप्त अवस्था
1: में पड़ो एक्टिवेट होकर
0: आ जाए,
1: हाँ वो मिल जाए। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। अब आप जे बैक्टीरिया मिलाओ में दलहनी तेलहनी फसलों के लाने राइजोबियम और इनके लाने आप एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरियम है, ये सब चीजें आप गोबर की खाद में मिला कर रख दो, उपयोग करवे के 15 दिन पहले फिर आप खेत में डाल दो तो वायुमंडल की नाइट्रोजन खींच के सीधे पौधा को उपलब्ध कराएं। और भैया जी आपको बहुत ज्यादा महंगे खरीदने की जरूरत नहीं है, आदमी एक लाने रात का है कि भैया इनको बहुत ज्यादा परेशानी वालों काम है या महंगे आए, तो महंगे नहीं आते भैया, सरकार बहुत कम पैसों में उपलब्ध कराते।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
1: आप। आपने राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, बमोरी में है, देवरी में है, इनमें जी बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं और थोड़ो सो ले आके आप अपने घर में खूब सारो बना सकते हैं गिलाने।
0: अच्छा, खूब सारो कैसे बन जाए?
1: हाँ, एक ही विधि जाए भैया कि आप गुड़ और पानी में घोल दो और थोड़ो सो जो पैकेट जो मिला था उतने से जो डाल दो उसमें और चलाते रहो गिलाने। ये 200 लीटर पानी में 1/2 किलो गुड़ भी अगर आप डाल दे हो और 8 दिन तक रखे रहो रोज चलाते हो लकड़िया के डंडा से,
0: एक पैकेट डालवे से
1: हाँ, तो जो आपको 200 लीटर बन गए, जो 200 लीटर बन गए, 200 लीटर आपको 1 एकड़ में डाल दो तो बैक्टीरिया होगा, ढेर बैक्टीरिया होगा। और एक और समृद्ध बनाने जो नहीं कर सका सो गोबर की खाद मिला के डाल लो।
0: मिश्रा जी, वर्तमान समय में किसान कौन हिसाब से अपनी खेती को उठा लेवे के जो खाद के लाने परेशान है किसान, तो वह खाद भी कम लगे, उपज बहुत उम्दा आए,
1: इतनी आपके पास गोबर की पची खाद जहाँ से भी मिल सकत हो सुबह छायरे में रख लो, पेड़ के छायरे में हो कहूं भी छायरे में रख लो, वो 2-3 बार चलाओ फिर जी में उसकी गर्मी शांत हो जाए और वो भुरभुरी हो जाए। फिर अपने जो सरकारी जो संस्थान है कृषि विज्ञान केंद्र है इनसे आप कल्चर माने तो जैविक खाद के पैकेट ले आओ, आप संगे फफूंद नाशक के पैकेट ले आओ, संगे कबक नाशक के पैकेट, एनपीके कल्चर जो है आजकल नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों चीजों के लाने एक कल्चर आने लगो, वो सब चीजें उपलब्ध कराते हैं।
0: अच्छा,
1: जैविक खाद में जो है बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, थोड़े थोड़े से उतने से ले आओ कृषि अनुसंधान केंद्र से, घर में डेवलप कर लो,
0: पानी मिला के,
1: पानी और गुड़ मिला के अपने घोल बना लो, वही के लाने फिर गोबर की खाद में मिला के अपने जितनी चाहे जमीन में डालत रहो, थोड़ा सो बचा लो वही में से जाओ जैसो जैसो मठा रहे थे वही थोड़ा सो बचा लो, वो फिर वही में फिर गोबर की खाद और गुड़ और पानी मिला लो, फिर और बढ़ा लो वही घूम, बाकी खेत में उपयोग करते रहो। अब जितनी चाय बार चाहो उतनी बार डालो, जितनी चाय बैक्टीरिया एक साल में तो बहुत बैक्टीरिया बढ़ा लो, ये बगैर बैक्टीरिया के नहीं हो सकत खेती।
0: जीवाश्म की बात करें, मिट्टी को उपजाऊ बनाने हैं, जीवाणु हैं जे सरंध्रता मिट्टी में बढ़ाते हैं, मिट्टी जो कठोर हो जा रही है मिश्रा जी, पथरागाही हो गई है, 50 HP से कम को ट्रैक्टर बखन्नी नहीं कर पाता आज के समय में। अब इमे जो आपने बात रखी है कि मिट्टी ऐसी मुलायम हो जाए है तो निश्चित है कि जो सूक्ष्म जीवाणु बे ये खेती करवा रहे बेखत्म हो गए हैं।
1: सबसे अच्छी बात कही आपने, जीवाणु जो है जितने भी अपन फर्टिलाइजर खेत में डालते हैं इनके लाने वो रूप में परिवर्तित कर दे जो रूप में पौधा को चाहिए है, पौधा ग्रहण करते है। सीधो फर्टिलाइजर नहीं पौधा खा लेते के अपन ने सीधो डालो खा लो, इनको तोड़ के और तंजील अवस्था में करके फिर जो है बैक्टीरिया उपलब्ध कराते है वो पौधा के लाने, वो वे बैक्टीरिया अगर अपन खेत में बढ़ा देवे तो अपनी उपज निश्चित रूप से बढ़े, वो खेती को खर्चा कम हो जाए। वो बैक्टीरिया महंगे है नहीं है, किसान समझे थे बहुत बड़ो काम या बहुत बड़ो हुआ तो बहुत आसान तरीका है भैया, हरो अपने घर में थोड़ा सा ले आओ और बढ़ाओ गुड़ में घोल के, फिर गोबर की खाद में ला के उपयोग करो, चाहे सीधो उपयोग करो खेत में छिड़कत रहो, तो ऐसे अपनी उपज बढ़ाओ। और
0: रसायन की जो उपलब्धता की कमी है उसे जूझवे की जरूरत नहीं है, खुद प्रयास करो। तो अपन ने आपने जो रास्ता बताओ बहुत उम्दा रास्ता बताओ मिश्रा जी, अपन देखा था कि बहुत समय से किसान भैयारों के लाने खाद की बोरी के संगे बीज की बोरी के संगे भी करिया पैकेट दे जाते के लिए ये पैकेट काय को मिले, आज उन पैकेट की वास्तविकता आपने अपने खेतों में करके प्रायोगिक रूप में उसे इतनो लाभ लो जब इतने विश्वास से आप बात कर पा रहे, कहा से जमाने से तो पैकेट दिखाई दे रहे मनो किसान भैया उपयोग नहीं करत अपने ते बुंदेलखंड में मसूर हो चना हो उगरा लगत है तो आदमी ने बेबो छोड़ दो, का उगरा से भी बचाव हो सकत का एमे?
1: उगरा से भैया इतने सारे फफूंद नाशक हैं जी, सबसे पहले नाम आते ट्राइकोडर्मा को,
0: फिर
1: सूडोमोनास है, बेसिलस सेप्टिलिस है, जो कृषि विज्ञान केंद्र से थोड़े थोड़े से ले आओ और गोबर की खाद में मिला के इनको डेवलप कर लो, और जे तीन चार किस्म के अगर फफूंद नाशक और यही में कछु कीटनाशक आते हैं जैसे बबीरिया बेसियाना है, मेटोरिजियम है, नीसोप्लस है, बर्टिस लगानी है, ये चीजें और मिला लो इनके लाने
0: मतलब तो गोबर की
1: गोबर की खाद में, तो भैया फफूंद नाशक अलग ढेरी में बनाने और कीटनाशक अलग ढेरी में बनाने, अलग अलग खाद की ढेरियों में इनको बना लो, 15 दिन में जी विकसित हो जाए, अबे अपने पास समय है जी बहुत बढ़ जाते हैं वो में। दरअसल गोबर की खाद इन सब को है खाना भोजन, इनमें जी बहुत ज्यादा बढ़ा थे,
0: और फिर जे चलेगा माटी में
1: जे डाल दे अपन ने माटी में तो माटी में जे सब फिर और बड़ा थे, वो जे सब फिर जो है आपको कीटनाशक और फफूंद नाशक दो ही हो गए आपकी फसल से, उगरा और फफूंद से लग बीमारी सभी बीमारी है।
0: और जो भूमि जनित अपनी मिट्टी में जो फफूंद कहा वह भी खत्म हो जाए, एको मतलब जो कहा मिश्रा जी कि जो किसान भैया हरे हमारे जा आपसे बातचीत सुन रहे हैं तो उनके चना और मसूर ये सालीना बिल्कुल टनाटन होने कहा है,
1: ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा लगत नहीं है, थोड़े से प्रयास आप लोग कर लो, जो विधि बताई है वो अगर आप कर लो तो निश्चित रूप से जितने भी उगरा के रोग हैं ये सब खत्म कर सकता।
0: देखियो माला करो, राजकिशोर मिश्रा जी ने अपने हिसाब से अपनी आवे वाली फसल में अपन कौन हिसाब से लाभ ले सकते हैं जो उन्होंने अपने अनुभव अपने संगे साझा करे, अपन को विचार करने कहा कि अपन कौन सी दवाइयाँ जैविक अंग्रेजी कौन हिसाब से लाभ ले सकते हैं, कभी उनको उपयोग करने कहा कि कम से कम मात्रा अपने ते की पची भाई गोबर की खाद से अपन लाभ ले सकते हैं, चाहे उनारी की फसल होवे चाहे सियारी की फसल होवे। समय होते बलवान हम आपको बता देते कि का रही आज मौसम की हालचाल, दिन को अधिकतम तापमान रहो 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो तो मनो गर्मी ज़्यादा होती, न्यूनतम तापमान रहो 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो तो आर्द्रता रही भुंसरा की 90.92%, संजाबिरिया की 74%। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति सागर से जो भाव प्राप्त है भाई है बेसोई हम आपको बताएं देते हैं। पीसीआर रही है 2250 से 2645 रुपया, 2645 रुपया। चना 4670 से 5715 रुपया। तेवरा राव है 1900 से 3100 रुपया प्रति क्विंटल। बटरी 2700 से 3400 रुपया प्रति क्विंटल। मसूर रही है 4700 से 9095 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग 5800 से 6800 रुपया और सोयाबीन 4300 से 7500 रुपया प्रति क्विंटल। यही के संगे अपनी किसानी में अपन को बरहमे से काम करने का हो तो ध्यान जो रखने का हो कि मौसम बदल रहा है, बिजली कड़कत है, कौन हिसाब से अपन को बचने का हो, समय समय पर अपनी चर्चा हो थे, पानी कबे गिर सकत है, कहाँ गिर सकत है, कैसे अपन को बचने का हो, फसलों में अपन को कौन हिसाब से पानी को नितार करने का हो, ज़्यादा पानी हो जाए तो, इन सब बातों के संगे अपनों ख्याल रखो, अपने बाल बच्चों को ख्याल रखो। हम सुनील राय अपनी वाणी को देते विराम, सभी किसान पंचों से करते हैं राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म?
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

किसान भाई भी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए श्रोताओं, हम सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म कुर्बान का ये नगमा। शब्द रचना है समीर की।

कुर्बान फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था आनंद मिलिंद ने। और आई श्रोता, अब सुनते हैं फिल्म 20 साल बाद का ये गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की गाय फिल्म 20 साल बाद के इस नगमे के साथ ही चितपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब मेंट पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:20 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता।

अभी आप सुन रहे थे आबिदा परवीन की आवाज़ में हज़रत वारिश शाह का ये कलाम। और रही श्रोतम, आप सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में लीना चंद्रावरकर का लिखा ये गीत। इसे हमने मारिया एल्बम से लिया है।

मारिया एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द रचना थी लीला चंद्रवरकर की और संगीत दिया था नीलू निरंजना ने। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं धड़कन एल्बम का ये गीत तान्या की आवाज़ में। शब्द रचना गीतांजलि सिंह की है।

आइए श्रोता, हम अब सुनते हैं परदेसिया एल्बम का ये गीत सपना अवस्थी की आवाज़ में। गीत और संगीत है पी के मिश्रा का।

सपनावस्थी के गाए इस गीत के साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

0: वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बजे हैं। आयु श्रोतम, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत के इस कार्यक्रम में हम

सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत। संगीत दिया है रामलाल ने और फिल्म का नाम है गीत गाया पत्थरों ने। सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हांडीखेड़ा ज़िला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और उनके परिवार के लोग। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके परिवार के लोग। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पिपरिया ज़िला कबीर धाम से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और उनके परिवार के लोग। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम निप्पी शाहिनी, मोहम्मद अफजल मलिक। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और उनके परिवार के लोग। ज़िला झारखंड बड़ा बॉम्बे सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, कुमारी रेशमा, कुमारी दीपाली, कुमारी और देवेन जी और उनके परिवार के लोग। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना और उनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत। फिल्म का नाम था गीत गाया पत्थरों ने। और आई श्रोतम, अब सुनते हैं यसुदास की आवाज़ में चितचोर फिल्म का ये नगमा। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं भूट चौराहा बुलंद शहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका, आकृति सिंह वंशराज से हैं, और एम एस अब्बासी यमुनापुरम बुलंदशहर से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है। धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा सोलंकी, सौर्या सोलंकी और मून सोलंकी ने कस्बा गुन्नौर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। फारूक अली खान, फैजी, फराज खान, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महूबिया, कविता महूबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवानी, सलोनी और पेंटर बाबू ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरी भाऊ बिडवे, अनिकेत सोनवणे, सुभांशी सोनवणे, श्रवण, अनीता बिडवे और उनके परिवार के सभी लोग। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, आसमा श्याम कुमार, दीपक श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार और उनके परिवार के लोग। जिला बालू छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश हम लिख भेजी है। देव नारायण साहू, योगिता, गीता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई साहू और उनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

चितजोर फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज़ में। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में फिल्म देख कबीरा रोया का ये नगमा। आवाज़ मन्ना डे की है और शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बड़े बाजार सागर से जयदीप नगड़िया, अनमोल सोनी, अभी सोनी, राजेश, ब्रजेश और उनके परिवार के सभी लोग। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है नेपाल पैलेस सागर से विष्णु सेन, बबलू सेन, नवल पटेल, रामशंकर मौर्य, निखिल चौरसिया, छोटू शर्मा और प्रकाश कन्नौजिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी, जीवनलाल, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और उनके परिवार के सभी लोग। दरबार कॉलोनी सनावत से इसे गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, आरुवी और प्रणव सांवले। साधना मेरठ से इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन और उनके परिवार के लोगों की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नवरतन हताबाड़ी हाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव देवांशु और डब्बू। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

0: मन्ना डे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे देख कबीरा रोया फिल्म का ये नगमा। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की और संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म रोटी का ये नगमा। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और उनके परिवार के सभी लोग। ग्राम विनेका तहसील बंडा जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविंद्र सेन, संगीता सेन, महेंद्र सेन, राम देवी सेन, सुरेंद्र सेन, नंदिनी सेन, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल, प्रीति और उनके परिवार के सभी लोग। शास्त्री नगर बीड शहर से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल और उनके परिवार के सभी लोग। ग्राम पंचायत काले गांव जफराबाद से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, सचिन कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और उनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।
1: बोल क्या कमी है मुझ में? अरे शुक्र कर कि तुझे पसंद किया है मैंने। यहाँ तो क्या आजू बाजू के 40 गांव में भी चिराग लेकर ढूंढे ना और मुझे ऐसी मिल जाए तो सारी जिंदगी गुलामी लिखवा दूं।
2: अरे जा जा।
1: अरे ये गोरा रंग देखा ना, 10 साल दिन रात साबुन से घस कर नहाएगा ना।

0: इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
1: इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में, और आई श्रोता अब सुनते हैं फिल्म फकीरा का ये नगमा महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा सुमन, अनुराग मोहन और उनके सभी मित्रगण। ग्राम पहरा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। गांव डाकघर निम्नाबाद, जिला जींद, हरियाणा से इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत और उनके परिवार के सभी लोगों की। बाबा कुटीर रायगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहते हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान और उनके परिवार के सभी लोग। इस गीत को सुनना चाहते हैं अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और उनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

0: महेंद्र कपूर के गाए फिल्म फकीरा के इस नगमे के साथ ही मनचाहे गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: भरत व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

0: भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया, छिप छिप कर मत देखो।
1: हमको नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी।
2: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, हमरी नजर भर जाएगी, हमरी नजर भर जाएगी, नजर भर जाएगी, नजर।
0: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू, अंगुली

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला कारीगर नवरंग।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त।

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और सारंगा।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई।

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्ण प्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: गीतकार भरत व्यास पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

वो नूर की बूंद जो चांद से टूटकर बिखरी थी मेरे वजूद पर, अब तक भीग रहा है जिस्म मेरा उसी में, छाया है धड़कनों में उसी का सुरूर सा। चांद से मिलने चला था, तेरा चेहरा नजर आ गया, कहकशां तेरे कदमों पर बिछाने की ख्वाहिश जो की, सितारों में सिमटा तेरा हुस्न महफिल में छा गया। तेरे लबों की जुम्बिश, तेरी सांसों की हरारत, निगाहों में है मस्ती और अदाओं में शरारत। शोखी तेरे हुस्न की है सबसे जुदा, हर अंदाज लाजवाब है और आंखों में है वफा।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था। शायद ख्वाबों में आकर तुमने ही उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी। शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहां कैद हो गई थी। दरीचे से बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए थे। शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से पान।

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूं फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा।

0: आंखों से खींच कर तुम्हारे दामन को, तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम्हें ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मत भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो।
1: छोड़

हसीना से यूं मुलाकात हो गई।

0: पर।
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा मर जाओ।

Yeah.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल

0: निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
1: Bharat ne har star par sahi faisle liye, sankat ka समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों